FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 35 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने

0: इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांधरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

जीवन में अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे, क्योंकि यही जीवन का शाश्वत नियम है। आप जिस वस्तु पर अधिक ध्यान देते हैं वही जीवन में सक्रिय हो जाती है। जिस भी वस्तु की हम उपेक्षा करने लगते हैं वो वस्तु धीरे धीरे अपने अस्त

अस्तित्व को खोना शुरू कर देती है। भले ही वो प्रेम हो, करुणा हो, जीवन का उल्लास हो अथवा सुख ही क्यों ना हो। जहाँ सकारात्मक सोच जीवन में सुख की जननी होती है, वहीं नकारात्मक सोच जीवन को दुख और विषाद से भर देती है। इसलिए जीवन में सदैव अपने दृष्टिकोण को, अपने कर्मों को, अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, ताकि दुख और विषाद जैसे शत्रुओं का समूल नाश हो सके।

जीवन में दिन आते और जाते रहते हैं, लेकिन वही दिन श्रेष्ठ कहलाता है जिस दिन की शुरुआत हम प्रभु भजन से करते हैं।

ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था, समर्पण और आत्मिक शांति के लिए भक्ति का होना बहुत ही आवश्यक है। भक्ति से मन पूरी तरह शांत होता है और ईश्वर की राह पर चलने वाला कभी अकेला नहीं रहता।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 6:40 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

देवताओं के आग्रह ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। संपूर्ण जगत के कल्याण की भावना से प्रेरित सरस्वती ने रानी कैकेयी की मुंह बोली दासी मंथरा की बुद्धि फेर दी। श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सजाई अयोध्या नगरी का उत्सव जैसा निखरा रूप मंथरा की आंखों में चुभने लगा। उदास होकर वो कैकेयी के पास पहुंची। कैकेयी मंथरा की उदासी का कारण पूछती हैं, किंतु वो चुप है।

लंबी सांसें लेते हुए आंखों से आंसू ढरका रही है। कैकेयी को अंदेशा होता है कि महाराज दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न कुशल से तो हैं, कहीं उग्र स्वभाव वाले लक्ष्मण ने उसे दंडित तो नहीं किया है। तब मंथरा का त्रिया चरित्र मुखरित होता है, कहती है, उसे भला कोई दंड क्यों देगा। हे रानी, तुम्हारा पुत्र यहां से दूर परदेश में है और तुम यहां कोमल शैया पर पड़ी सुबह की मीठी नींद ले रही हो। राजा के छल कपट का ज्ञान तुम्हें क्यों होने लगा? मंथरा के मन का मैल कैकेयी से छुपा न रहा, किंतु उस पर क्रोध न कर कैकेयी ने राम के हृदय में अपने लिए उस स्नेह, आदर और सम्मान की बात कही जो माता कौशल्या को भी नहीं मिलता।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे मनोरंजन और जानकारियों का कार्यक्रम सुबह सुहानी। कार्यक्रम में आज विशेष के साथ ही हम आपको जानकारी देंगे अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के बारे में। 7:40 पर सुनिएगा गांधी चर्चा और सुबह 8:30 का समय है कार्यक्रम गाने सुहाने का। सुबह 9:00 सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम जनवाणी और जनवाणी कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे पर्यावरण की। श्रोता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं 0189224391 ये नंबर डायल करके। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां सुबह 10:00 प्रसारित किया जाएगा। 10:30 पर सुनिएगा लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर जय हिंद गीतमाला। ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 11:05 पर और 11:30 का समय है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

उमंग का। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे दिन में 12 बजे और दोपहर 12:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुनो सखी।

प्रादेशिक समाचार आप सुना करते हैं आकाशवाणी के शिमला केंद्र से सुबह 9:20 पर, 11 बजे, दिन में 3 बजे, शाम 6 बजे और 7:45 पर। आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात 8 बजे, मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर, समाचार संध्या 8:45 पर और न्यूज एट 9 रात 9 बजे रिले की जाएंगी। दिन में 1:10 पर आप सुना करते हैं विविध भारती के कार्यक्रम जो आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जाते हैं।

0: शाम 5:10 पर सुनिएगा भजन और 5:30 का समय है कार्यक्रम युवा मंच का। आज है फिल्मी फ्राइडे। कार्यक्रम सुरमई सांझ में सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद उठाइए। समय है शाम 6:06 और 6:30 का समय है कार्यक्रम मौजा गराइंदियां का। खेतीबाड़ी कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 7:10 पर और रात्रि 8:00 सुनिएगा मिले जुले गीतों पर आधारित कार्यक्रम सबरस। रात्रि 8:30 पर सुनिएगा देशकान और रात 9:15 पर कार्यक्रम प्रसारित करेंगे एक ही फिल्म से। रात 9:30 का समय है कार्यक्रम कारवा सुरों का और 10:00 सुनिएगा बॉलीवुड बीट्स। पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत प्रसारित किया जाएगा रात्रि 10:30 पर। तो ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में, 7:00 हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य 22 दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशांत क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
2: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
1: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधारस्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्ध

0: सुरक्षायां पुनः दृढ़ीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां संबद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः सुरक्षा आर्थिक भविष्यञ्च सुदृढतया परस्परं सम्बद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इंडो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था, वित्तीय निरीक्षणं, संसदीय विशेषाधिकाराः, विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविध पक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मंत्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मंत्रिणां एकां राष्ट्रिय कार्यशालां आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंहः, केन्द्रीय राज्य मंत्रिणः प्रोफेसर एस पी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मंत्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। सप्तपञ्चाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं, प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88.3 मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं 40 धावनांकै पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवम्बर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजक और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का भी उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के

0: प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि इस संबंध में ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे गए हैं। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांधरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. India and Japan have reaffirmed the shared commitment to the salience of economic security as one of the foundational pillars of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. The India-Japan Joint Declaration on Economic Security Cooperation said, the economic security partnership is underpinned by mutual trust, shared values and aligned interest and is a recognition that the prosperity, security and economic futures of the two sides are deeply intertwined. It added that this declaration is a recognition that the synergy between the updated free and open Indo-Pacific and the mutual and holistic advancement for security and growth across regions Mahasagar initiative provides both sides with the required impetus to furthering economic security cooperation. Both sides will strengthen bilateral cooperation in 5 key sectors: semiconductor, critical minerals, information and communication technology, clean energy and pharmaceuticals. Election Commission of India, ECI, has sought responses from rival factions of All India Trinamool Congress, AITC, regarding competing claims about the party's organizational elections and authorized signatories. In a statement, the Commission said it has written separate letters to Mamata Banerjee and party leader Ritobroto Banerjee regarding the claims and counterclaims by both factions with respect to organizational elections and authorized signatories of the AITC. The Commission said both sides have been directed to submit the responses by 5:30 p.m.

0: सुबह सुहानी।
1: खूबसूरत पहाड़, खिड़की से आती हुई ठंडी हवाएं, बादलों से ढका हुआ आसमान और कहीं कहीं वर्षा की गिरती हुई बूंदें, इससे खूबसूरत और हसीन भला सुबह की शुरुआत क्या हो सकती है। और धर्मशाला के इस हसीन सुबह में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है और आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ वंदना रैना। तो श्रोताओं, अगले कुछ मिनटों तक हम आपके कानों में घोलने वाले हैं ढेर सारी पॉजिटिविटी, सुरीले गीत और जानकारियों की बातें। आप सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए और ये है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र।

जी श्रोताओ, कार्यक्रम सुबह सुहानी की हम शुरुआत कर चुके हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ जो आपने सुना जसपाल सिंह की आवाज में। और इसी के साथ अगर सुबह की शुरुआत किसी अच्छे विचार के साथ हो तो पूरा दिन ही बन जाता है। और आज का विचार ये है कि कल का दिन बीत चुका है, आने वाला कल अभी बाकी है और आज का दिन एक नया अवसर है आप सबके लिए कुछ नया हासिल करने के लिए, क्योंकि ये खुला आसमान फैला हुआ है और आप इस आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं अपने जोश से, अपनी मेहनत से और अपने दृढ़ निश्चय से। इसलिए मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए।

जी श्रोताओ, 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र और कार्यक्रम है सुबह सुहानी। श्रोताओ, जो लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं और अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को सहेज कर रखते हैं, वही लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं और ऊंचाइयों को छूते हैं। और सबसे ज़रूरी होता है हमें अपने इतिहास को जानने का मौका मिले और साथ ही हम उस इतिहास को जाने और साथ ही अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व कर सके। तो चलिए अब कार्यक्रम में हम भी पलटते हैं इतिहास के पन्ने और बात करते हैं आज विशेष की। 3 जुलाई के दिन वो कौन कौन सी खास घटनाएं हुई थी जिन्होंने इस दिन को कुछ खास बना दिया। साल 1661 में आज ही के दिन पुर्तगाल ने बॉम्बे को ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय को उपहार में दिया था और जीएल बेयर ने लंदन में पहली बार रंगीन टेलीविजन का प्रसारण किया 3 जुलाई सन 1928 को। आज के दिन वर्ष 1951 में न्यूजीलैंड के महान तेज गेंदबाज रिचर्ड हेडली का जन्म हुआ और महान लेखक फ्रांस काफ्का का जन्म प्राग में 3 जुलाई सन 1883 को हुआ था। दुनिया भर के साहित्यकार उनकी रचनाओं से प्रेरणा पाते हैं और उनके नाम पर एक शब्द भी बना है। किसी भी व्यक्ति की ऐसी परिस्थिति जिसमें उसे कोई रास्ता नहीं दिखता है और वह चारों ओर मुश्किलों में घिरा होता है, उसे काफ्का-एस्क कहा जाता है। और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं मेटामॉर्फिसिस, द ट्रायल और द कासल। और श्रोताओ, आज के दिन साल 1908 में ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन्होंने समाचार पत्र केसरी में अंग्रेजी सरकार की दमनकारी नीतियों की आलोचना की थी और क्रांतिकारियों का बचाव किया था और इसीलिए उन्हें 6 साल की कठोर कारावास की सजा मिली और उन्हें वर्मा की मांडले जेल भेज दिया गया था, जहां पर उन्होंने गीता रहस्य इस नाम से प्रसिद्ध पुस्तक की रचना भी की थी।

जी श्रोताओं, कार्यक्रम सुबह सुहानी में हम बात कर रहे हैं आज विशेष की। 3 जुलाई सन 1996 को बेलारूस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और आज है बेलारूस का स्वतंत्रता दिवस। और इसी के साथ म्यांमार में भी पहला महिला दिवस मनाया गया था साल 1996 में आज ही के दिन। और सर, साल 1996 में हिंदी फिल्मों के अभिनेता राजकुमार का निधन हुआ था 3 जुलाई को। उनका असली नाम कुलभूषण पंडित था और वे सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। 26 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म रंगीली रिलीज हुई थी और इसके बाद उन्होंने मदर इंडिया, हमराज, पैगाम, पाकीज़ा, मर्यादा, नीलकमल और हीर रांझा जैसी लगभग 70 फिल्मों में अपना अभिनय का जादू दिखाया और वे अपने बेहतरीन अभिनय, स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी के कारण उस समय के सुपरस्टार्स में से एक माने जाते थे। तो कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म काजल से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और इस गीत को फिल्माया गया राजकुमार पर।

श्रोताओ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। और हम आपको बता दें कि हर साल 3 जुलाई को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। जी श्रोताओ, प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो एक प्लास्टिक के बैग को सड़ने में सैकड़ों साल लग जाते हैं और जिससे हमारी मिट्टी, हमारा पानी और हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है। और इस्तेमाल के बाद ये फेंके गए प्लास्टिक बैग नालियों में, नदियों में, महासागरों में पहुंचते हैं, जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं और इसके साथ ही प्लास्टिक बैग के अत्यधिक इस्तेमाल से होने वाला पर्यावरण नुकसान पीढ़ियों तक भुगतना पड़ता है। इन्हीं सब समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से वैश्विक पहल के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस हर साल आज के दिन यानी कि 3 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन लोगों को प्रेरित करता है कि प्लास्टिक बैग के प्रयोग से पर्यावरण और वन्य जीवों पर पड़ने वाले घातक प्रभावों के प्रति लोगों को संदेश देता है कि कपड़े और जूट के थैलों को अधिक से अधिक अपनाना चाहिए। और ये दिन मनाया जाता है किसी न किसी थीम पर, तो साल 2026 का थीम है ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक्स टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी कि एकल उपयोग करने वाले प्लास्टिक से मुक्ति एक सतत भविष्य की ओर। और श्रोताओ, इसी के साथ आज है अवज्ञा दिवस यानी कि डिस ओबीडियंस डे। ये दिन हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है और ये दिन क्यों है खास, इसके बारे में हम आपको बता दें। ये दिन लोगों को प्रेरित करता है कि वो अपनी नीरस दिनचर्या से ब्रेक लें, थोड़ा आज़ादी और रोमांच का अनुभव लें। इसी के साथ ये दिन कहता है अपने विवेक की बात सुनने के लिए और खुद को समय देने के लिए। अवज्ञा दिवस का अर्थ किसी कानून को तोड़ना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी में थोड़ा मुक्त होकर जीने से है।

जी श्रोताओ, कार्यक्रम सुबह सुहानी में अब हम बात करने जा रहे हैं आज के मुख्य समाचारों की। सबसे पहले बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार की, तो जापान की नव निर्वाचित प्रधानमंत्री साने ताकाइचा भारत के आधिकारिक दौरे पर है। नई दिल्ली में आयोजित भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानी प्रधानमंत्री ने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा की है। श्रोताओ, फीफा विश्व कप के मुकाबलों में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है, जबकि अमेरिका ने बोस्निया को 2-0 से हराया और बेल्जियम ने सेनेगल के खिलाफ रोमांचक जीत दर्ज की है। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय समाचारों की, तो जम्मू कश्मीर में बहुप्रतीक्षित अमरनाथ यात्रा आज से आधिकारिक तौर पर शुरू की गई है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2,00,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। सरकार ने आम आदमी और किसानों को बड़ी राहत देते हुए डीजल पर टैक्स में 5.50 रुपये प्रति लीटर की भारी कटौती की है और देश के भीतर पेट्रोल की किल्लत ना हो इसके लिए सरकार ने कंपनियों द्वारा पेट्रोल निर्यात करने पर ड्यूटी बढ़ा दी है। इसी के साथ देश में नया रोजगार कानून भी लागू हुआ है, जिसके तहत मजदूरों को साल में कम से कम 125 दिन काम की गारंटी मिलेगी और न्यूनतम दिहाड़ी 300 रुपए तय की गई है। और श्रोताओ, बात करते हैं मौसम के बारे में, तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए

ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका है। और लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कई मुख्य और संपर्क मार्ग मलबे के कारण बंद हो गए हैं। और मौसम में आई इस तब्दीली को देखते हुए प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नदी नालों के किनारे ना जाने की सख्त हिदायत दी है।

जी श्रोताओ, वक्त पंख लगाकर उड़ता है और आज सुबह के कार्यक्रम सुबह सुहानी का हमारा सफर भी बस यहीं तक। मुस्कुराते रहिए, अपने दिन को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी धर्मशाला।

0: सुबह सुहानी।
1: कार्यक्रम सुबह सुहानी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए प्रस्तुत है गांधी चर्चा।

गांधी चर्चा में आप सुना करते हैं महात्मा गांधी द्वारा लिखित सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा से वाचन। आज प्रस्तुत है दूसरे भाग का 19वां अध्याय, नेटाल इंडियन कांग्रेस। सभा हर हफ्ते या हर महीने आवश्यकता के अनुसार होती थी।

उसमें पिछली सभा का विवरण पढ़ा जाता और अनेक प्रकार की चर्चाएं होती। चर्चा करने की और थोड़े में मुद्दे की बात कहने की आदत तो लोगों को थी ही नहीं। लोग खड़े होकर बोलने में झिझकते थे। सभा के नियम समझाए गए और लोगों ने उनकी कदर की। इससे होने वाले अपने लाभ को वे देख सके और जिन्हें पहले कभी सार्वजनिक रूप से बोलने की आदत नहीं थी, वे सार्वजनिक कामों के विषय में बोलने और विचारने लग गए। मैं यह भी जानता था कि सार्वजनिक काम करने में छोटे छोटे खर्च बहुत पैसा खा जाते हैं। शुरू में तो मैंने निश्चय कर लिया था कि रसीद बुक तक ना छपाई जाए। मेरे दफ्तर में साइक्लोस्टाइल मशीन थी, उस पर रसीदें छपा ली। रिपोर्ट भी मैं इसी तरह छपा लेता था। जब तिजोरी में काफी पैसा जमा हो गया, सदस्य बढ़े, काम बढ़ा, तभी रसीद आदि छपाना शुरू किया। ऐसी किफायत हर एक संस्था के लिए आवश्यक है। फिर भी मैं जानता हूं कि हमेशा यह मर्यादा रह नहीं पाती। इसलिए इस छोटी सी उगती हुई संस्था के आरंभिक निर्माण काल का विवरण देना मैंने उचित समझा है। लोग रसीद की परवाह नहीं करते थे, फिर भी उन्हें आग्रह पूर्वक रसीद दी जाती थी। इसके कारण आरंभ से ही पाई पाई का हिसाब साफ रहा और मैं मानता हूं कि आज भी नेटाल कांग्रेस के दफ्तर में 1894 के पूरे पूरे ब्योरे वाले बही खाते मिलने चाहिए। किसी भी संस्था का बारीकी से रखा गया हिसाब उसकी नाक है। इसके अभाव में वह संस्था आखिर गंदी और प्रतिष्ठा रहित हो जाती है। शुद्ध हिसाब के बिना शुद्ध सत्य की रक्षा असंभव है। कांग्रेस का दूसरा अंग उपनिवेशों में जन्मे हुए पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों की सेवा करना था। इसके लिए कॉलोनियल बॉर्न इंडियन एजुकेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई। नवयुवक ही मुख्यतः उसके सदस्य थे। उन्हें बहुत थोड़ा चंदा देना होता था। इस संस्था के द्वारा उनकी आवश्यकताओं का पता चलता था और उनकी विचार शक्ति बढ़ती थी। हिंदुस्तानी व्यापारियों के साथ उनका संबंध कायम होता था और स्वयं उन्हें भी समाज की सेवा करने के अवसर प्राप्त होते थे। यह संस्था वाद विवाद मंडल जैसी थी। इसकी नियमित सभाएं होती थीं। उनमें वे लोग भिन्न भिन्न विषयों पर अपने भाषण करते और निबंध पढ़ते थे। इसी निमित्त से एक छोटे से पुस्तकालय की भी स्थापना हुई थी। कांग्रेस का तीसरा अंग था बाहरी कार्य। इसमें दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेजों में और बाहर इंग्लैंड तथा हिंदुस्तान में नेटाल की सच्ची स्थिति पर प्रकाश डालने का काम होता था। इस उद्देश्य से मैंने दो पुस्तिकाएं लिखीं। पहली पुस्तिका का नाम था दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले प्रत्येक अंग्रेज से विनती। उसमें नेटालवासी भारतीयों की स्थिति का साधारण दिग्दर्शन प्रमाणों सहित कराया गया था। दूसरी पुस्तिका का नाम था भारतीय मताधिकार एक विनती। उसमें भारतीय मताधिकार का इतिहास आंकड़ों और प्रमाणों सहित दिया गया था। ये दोनों पुस्तिकाएं काफी अध्ययन और परिश्रम के बाद लिखी गई थीं। इनका फल भी वैसा ही मिला। इनका व्यापक प्रचार किया गया था। इस कार्य के निमित्त से दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के मित्र पैदा हो गए। इंग्लैंड में और हिंदुस्तान में सब पक्षों की तरफ से मदद मिली। कार्य करने की दिशा प्राप्त हुई और उसने निश्चित रूप धारण किया।

श्रोताओ अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। श्रोताओं दिनांक 5 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्य में जानकारी का विषय होगा मानसून में बच्चों की सेहत का कैसे रखें ध्यान। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत आनंद। तो सुनना ना भूलिए कार्यक्रम आरोग्य 5 जुलाई 2026 को, समय है सुबह 9 बजे से 10 बजे तक। और जानकारी हासिल करने के लिए हमारा फ़ोन नंबर रहेगा 01892224391। और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि ये कार्यक्रम आप मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। और श्रोताओं मंगलवार को सुबह 8:30 से 9 बजे तक हम प्रसारित करेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम आप और हम, जिसमें आप अपने सुझाव और शिकायतें हमें बता सकते हैं। दिन रहेगा मंगलवार दिनांक 7 जुलाई 2026 और फोन नंबर रहेगा 01892224391। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, लीजिए सुनिए देशगान।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है।

आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों

0: के कारण मुश्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमेरिका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमेरिका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास से रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान के प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा AI से बने फर्जी फैसलों की कानूनी

0: निशाने देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे। अदालत ने कहा, फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक। नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्ते की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रैवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं। राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज जापानीज काउंटर पार्ट सनाए तकाची स्ट्रॉन्गली कंडेम टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन ऑल हिज फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about party's organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pehelgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup. And BCCI announces schedule for India's 2-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pehelgam, Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report of 29 July 2025 mentioning the resistance front. We have a report.
3: Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi also strongly condemned the terrorist attack in Delhi on November last year. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities including Al-Qaeda, ISIS, Lashkar-e-Tayyaba, Jaish-e-Mohammed and their proxies. The two Prime Ministers stressed the need for resolute action to eliminate terrorist safe havens, dismantle terrorist financing networks and their nexus with transnational crime and halt the cross-border movement of terrorists.

0: two players, PhonePe and Google Pay, account for around 80% of all UPI transactions. Crude declines, but government hints won't cut fuel rates, reports the Tribune. Monsoon finally arrives in Delhi, ending weeks of heat and humidity, states the Pioneer. Sirsa Kino earns GI tag, decade of scientific farming bears fruit, informs the Tribune. And finally, simple but effective, Citizen Kane is fueling England's World Cup dreams, writes in the Sun Times about England's football skipper, Harry Kane. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Shubhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations. Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about parties' organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pahalgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip Father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at the FIFA World Cup. And BCCI announced a schedule for India's two-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। डीजे प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने सुहाने। गाने सुहाने इस कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको ले चलते हैं भारतीय सिनेमा के उस स्वर्ण युग में जहां अभिनय की कोई परिभाषा नहीं थी बल्कि अभिनय खुद एक नाम से पहचाना जाता था और वो नाम था राजकुमार का। जी हां श्रोताओं, जानी के नाम से मशहूर और अपनी मखमली लेकिन रूपदार आवाज से हर दिल पर राज करने वाले इस सितारे का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। तो आज के गाने सुहाने में हम आपको सुनवाएंगे राजकुमार की फिल्मों से कुछ गीत और साथ ही उन्हीं के बारे में बात करेंगे कार्यक्रम में।

जी श्रोताओ, आज का ये गाने सुहाने कार्यक्रम विशेष रूप से है अभिनेता राजकुमार की फिल्मों से। और आज हम कार्यक्रम में आपको रूबरू करवा रहे हैं कुलभूषण पंडित से लेकर बॉलीवुड के दिग्गज राजकुमार तक की इस शानदार यात्रा से। 8 अक्टूबर सन 1926 को भारत के बलूचिस्तान के लोरलाई में एक कश्मीरी पंडित परिवार में इनका जन्म हुआ। और किसी ने नहीं सोचा था कि एक साधारण परिवार में जन्मा यह लड़का आगे चलकर बॉम्बे पुलिस में सब इंस्पेक्टर बना और एक दिन सिल्वर स्क्रीन का शहंशाह बन जाएगा।

0: मैं भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
0: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
0: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
0: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
1: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
0: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
1: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
2: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने सुहाने और आज का ये कार्यक्रम विशेष रूप से अभिनेता राजकुमार के ऊपर। श्रोताओ, राजकुमार ने खाकी वर्दी को अलविदा कहकर साल 1952 में फिल्म रंगीली से अपना फिल्मी सफर शुरू किया था, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली साल 1957 में बनी ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म मदर इंडिया से। और मदर इंडिया के बाद राजकुमार ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वक्त, पाकीजा, दिलेक मंदिर, हीर रांझा और नील कमल जैसी फिल्मों ने उन्हें एक ऐसा मुकाम दिया जो कोई और हासिल न कर सका।

श्रीशोत और राजकुमार अपने खास अंदाज और संवाद अदायगी के लिए जाने जाते थे, और जब वे पर्दे पर आते थे तो उनके चलने का अंदाज, उनकी डायलॉग डिलीवरी सिनेमा घरों में तालियों की गूंज पैदा कर देती थी। और कहा जाता है कि वे कभी भी फिल्मों में जंपिंग जैकिंग या फिर नाचने कूदने वाले हीरो नहीं थे। उनकी आवाज और स्क्रीन प्रेजेंस ही फिल्म को हिट कराने के लिए काफी होती थी। और चलिए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं पाकीज़ा फिल्म से,

जी श्रोताओ, राजकुमार जितने बेहतरीन पर्दे पर थे, असल जिंदगी में भी उतने ही बेबाक और मुंहफट थे और अपने खास तकिया कलाम जाने के लिए काफ़ी मशहूर थे। और उनकी फिल्मों के उनके दमदार किरदार और संवादों को आज भी सुना जाता है और सराहा जाता है, और वो डायलॉग जो हैं उनकी फिल्मों के, वो आज भी लोगों की जुबान पर हैं।

जी श्रोताओ, हर चमकते हुए सितारे को एक ना एक दिन ढलना होता है। 3 जुलाई 1996 को इस महान अभिनेता ने दुनिया को अलविदा कह दिया। और राजकुमार भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में, उनके शानदार डायलॉग हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। और यही तो एक सच्चे कलाकार की पहचान होती है, उनका काम, उनका स्टाइल और उनकी आवाज़ हमें हमेशा उनकी याद दिलाती रहेगी। तो आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम गाने सुहाने सफर ए राजकुमार का समय यहीं पर समाप्त होता है। और कार्यक्रम में एक और खूबसूरत सा गीत उन्हीं की फिल्म हीर रांझा से।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो
0: नहीं।
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

जी श्रोताओं, इस समय हमारी घड़ी की सुइयों के अनुसार सुबह के 9:05 हो चुके हैं और हम हाजिर हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम जनवाणी लेकर।

श्रोताओ, आपके अपने सजीव फोनिन कार्यक्रम जनवाणी में सभी सुनने वालों का स्वागत है और आज मैं हूं आपके साथ वंदना रैना। जी दोस्तों, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस पानी को हम पीते हैं और जिस धरती पर हम चलते हैं, सोचिए जरा, अगर वही सुरक्षित नहीं रहेगी तो हमारा आने वाला कल कैसा होगा। कभी ज्यादा गर्मी, कभी अचानक तेज बारिश, कभी जंगलों में आग और कभी पानी की कमी, प्रकृति हमें लगातार संकेत दे रही है कि अब संभलने का वक्त आ चुका है। तो श्रोताओ, आज कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि किस तरह हम अपने पर्यावरण को बचाकर अपने भविष्य को संवार सकते हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम में हम आपको सुनाएंगे बेहतरीन फिल्मी नगमे और साथ ही अपने श्रोताओं से ये जानेंगे कि किस तरह के वो प्रयास अपने तौर पर कर रहे हैं अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए। और जब तक कोई श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं 01892224391 इस नंबर पर, तब तक हम आपके लिए लेकर आते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

0: जी श्रोताओं, बिल्कुल ये हसीन वादियाँ हमें यही कह रही हैं कि अगर आप हमारी खूबसूरती को इस धरती पर यूं ही देखना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारा संरक्षण किया जाए। कार्यक्रम के पहले कॉलर लाइन पर हैं। हेलो
1: जी, नमस्ते
0: जी, नमस्कार, अपना परिचय दीजिए।
1: जी, योगेश जांगड़े, बेमेतरा, छत्तीसगढ़ से।
0: जी जी योगेश जी, आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के बारे में, तो आप ये बताइए कि पर्यावरण संरक्षण आपके लिए क्या मायने रखता है?
1: बहुत मायने रखता है, क्योंकि जीवन के हमारे हर पग में मतलब पर्यावरण का विशेष महत्व है
0: जी।
1: और बिना पर्यावरण के हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते।
0: और पर्यावरण को बचाने के लिए प्रदूषण से आप क्या अपने तौर पर करते हैं?
1: हम तो बचपन से ही इस ओर काफी अग्रसर रहे हैं, और जो हमारे जो जैसे तालाब हो गए, शासकीय जगह, स्कूल वगैरह हो गए, तो वहाँ भरपूर पेड़ भी लगाए हैं और वो काफी अभी मतलब बड़े हुए हो गए हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, और आपका ये प्रयास जो है वो निश्चित रूप से जो हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं उन्हें भी प्रेरित करेगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए शुक्रिया।

0: जी श्रोताओं, कभी आपने सोचा है कि हर व्यक्ति अगर साल में सिर्फ एक पेड़ भी लगाए और उसकी देखभाल करे तो कुछ ही वर्षों में हमारा वातावरण कितना बदल सकता है। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार
0: जी। नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिए, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश बोल रहा हूँ।
0: जी अविनाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है और आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की।
1: जी,
0: तो आप बताइए कि आपने क्या अपने जीवन काल में कोई पौधा लगाया है क्या?
1: जी बिल्कुल, हर बल्कि हम कोशिश तो करते हैं कि कम से कम साल में कम से कम 10-12 पौधा लगाते हैं। और देखिए, हमारा ये है कि मैंने सिर्फ पौधा लगाया ही नहीं बल्कि उनको बड़ा भी कर चुके हैं, काफी बड़ा हो चुके हैं और उसमें फल भी आने लगे हैं।
0: जी अविनाश जी, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पेड़ लगाने के बाद या पौधा लगाने के बाद हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हमें उसकी देखभाल भी करनी है।
1: जी जी जी बिल्कुल। और देखिए वही, क्योंकि हम तो किसी पेड़ को काटने के बाद एक बार भी नहीं सोचते कि इसकी जगह पे हम भरपाई कैसे करें, तो हमें पहले भरपाई करना चाहिए, बाद में उसको काटना चाहिए किसी भी पेड़ को, तो इसे हम सबके लिए परिवार में जो हम उसको उस शून्य स्थान को हम पूर्ण कर सकें। क्योंकि देखिए, और इससे तो पेड़ लगाने से ही नहीं होगा, उसको बचाना चाहिए। कि आजकल देखिए क्या होता है कि जैसे पर्यावरण दिवस आ रहा है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पेड़ लगा तो पौधा लगा के सेल्फी खिंचवा के सोशल मीडिया पोस्ट करते हैं, बाद में उसको भूल जाते हैं कि वो पेड़

0: क्या कहाँ गया थे, क्या हो गया, तो इन सबको हमें उसको चर्चा भी करना चाहिए, उस पौधे को
1: जी,
0: प्रयोग
1: बहुत
0: करना
1: बहुत
0: चाहिए।
1: अच्छी सोच है, बहुत अच्छे प्रयास हैं आपके हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, और आज आपने कार्यक्रम में कॉल किया उसके लिए आपका धन्यवाद। जी श्रोताओं, कार्यक्रम जनवाणी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और आज कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे पर्यावरण की। हेलो
0: हेलो, नमस्ते मैम जी।
1: जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
0: नगरोटा भगवान से बोल, पूजन भंडारी।
1: जी पूजन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं आज पर्यावरण की। तो पर्यावरण में पूजन जी, एक और चीज़ जो आजकल हम सुनने में आ रही है कि हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: जी
0: मैडम, आप
1: जी
0: सही बोल रही हैं।
1: तो इस विषय पर आपके क्या विचार हैं?
0: मैडम, एक्चुअली मैं एक आर्टिस्ट कलाकार हूँ,
1: जी
0: और मैं आपको इतना बता दूं, अगर आप टोपी ये रखा हो प्लास्टिक के ऊपर या पर्यावरण के ऊपर है, पर्यावरण
1: जी
0: के
1: हमारा
0: ऊपर ही है ना।
1: हमारा ये
0: जी
1: टॉपिक जो है वो हर उस विषय पर है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, और किस तरह
0: जी
1: से हम
0: जी
1: पर्यावरण को
0: बिल्कुल जी।
1: प्रदूषण से बचा सकते हैं।
0: तो पहली बात तो आपको ये बताऊंगा कि मैं सैकड़ों के हिसाब से मैं पौधारोपण कर चुका हूँ,
1: जी
0: और जब भी मेरा जन्मदिन होता है, मेरी एनिवर्सरी या कोई भी खुशी का मौका मुझे मिलता है, तो मैं हमेशा उससे एक पौधा कहीं ना एक पौधा या दो पौधे कहीं ना कहीं रोपित करता हूँ।
1: जी,
0: उसके अलावा मेरी हमेशा कोशिश रही है, जहां भी किसी का कोई कार्यक्रम हो, किसी का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो, जन्मदिन हो, कुछ भी हो, तो मैं उसमें एक पौधा गिफ्ट देना पसंद करता हूँ। मैंने अब तक मैं 250 से ऊपर लोगों को मैं ये पौधे जो है वो गिफ्ट कर चुका हूँ।
1: जी, बहुत अच्छी
0: जी
1: बात है।
0: जी और हमेशा मैं काफी कार्यक्रमों में जाता हूँ, चीफ गेस्ट भी बनाऊ मैं, तो मेरी कोशिश यही होती है हमेशा लोगों को मोटिवेट करेगी पर्यावरण को हम कैसे बचा सकते हैं। तो
1: जी, और
0: दूसरी बात
1: पूजन
0: हो
1: जी,
0: गई।
1: आज पूजन जी आपको पता है कि आज है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे।
0: जी मैडम जी,
1: जी, और
0: मैं बात
1: कहीं ना
0: कर
1: कहीं ये दिन हमारे जो सुनने वाले हैं और हमारे दुनिया भर के लोग हैं उन्हें ये प्रेरित करता है कि जो प्लास्टिक बैग है उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, बल्कि घर
0: ना
1: के
0: करें।
1: बने हुए थैलों का इस्तेमाल किया जाए।
0: जी जी मैडम बिल्कुल। मैं आपको एक बात, मुझे तब याद है जब अभी लॉकडाउन लग गया था, और
1: जी
0: मैं शॉपकीपर भी
1: जी
0: हूँ, तो दुकान मेरी बंद हो गई थी, तो एक मिसिज ने वो घर का सामान पड़ा था प्लास्टिक की बोतलें डब्बे में, तो वो फेंक दी खेतों में। तो मैंने
1: अच्छा
0: कहा ये क्यों फेंक रहे हो, बोला ये वेस्ट है। मैंने कहा रुको, तो मैंने उस टाइम पे ही शुरू किया था ये प्लास्टिक की बोतलें, पीपे, डब्बे, जो भी इनके कान छाड़ के मैंने इनको, आपका जो प्यासे पंछी होती है उनके लिए मैंने दाना पानी पात्र बना दिए थे कलर करके,
1: जी, बहुत
0: और मैंने
1: अच्छी
0: वो चीज।
1: आपकी सोच है, बहुत अच्छे प्रयास हैं, क्योंकि प्लास्टिक को समाप्त होने के लिए धरती पर जो है वो सालों लग जाते हैं, और इसके साथ
0: बिल्कुल
1: ही ये
0: बिल्कुल खत्म नहीं होता
1: प्रदूषण
0: मैडम,
1: फैलाता
0: प्लास्टिक
1: है ना? तो
0: खत्म
1: रीयूज़
0: ही नहीं
1: करें
0: होता।
1: तो ज़्यादा बेटर रहेगा, रिसाइकल करें तो, है ना?
0: जी। और मेरी, और मैंने बहुत सी जगह उसकी एग्जीबिशन लगाई, लोगों को मैंने मोटिवेट किया कि प्लास्टिक से हम कैसे बच रहे हैं, वेस्ट प्लास्टिक हम कहाँ यूज करते हैं, वो जमीन में जाए ना जाए और कहीं और वो यूज हो रहे हैं।
1: जी बिल्कुल
0: तो
1: सही
0: वही मेरी
1: सोच
0: आज
1: है।
0: भी शुरू है, मेरी इस टाइम मेरे पास कम से कम 300 से ज्यादा मैंने बोतलों को कान छाड़ के मैंने सेव की हुई है, और
1: जी
0: मैं स्कूलों में जाता हूँ और काफी जगह जाके मैं बच्चों को और लोगों को मोटिवेट करता हूँ प्लास्टिक से बचने के लिए, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है।
1: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने पूजन जी, और अगर हम सब मिलकर थोड़े थोड़े प्रयास भी करें ना, तो इस धरती को सुंदर बनाने में हम भी अपना सहयोग दे सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। मैं बस आपके आकाशवाणी धर्मशाला के माध्यम से सभी को यही संदेश देना चाहूंगा, जहां जहां भी कोई किसी का कोई कार्यक्रम हो, तो आप उपहार के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे आप उनको कोई पौधा दीजिए, तो वो मोटिवेट भी हो और हम इस पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते।
1: जी बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छे सुझाव, और आपने कार्यक्रम में कॉल किया उसके लिए धन्यवाद।

जी श्रोताओं, बिल्कुल सही कहा। हमारी जिंदगी है, हमारा पर्यावरण, हमारे पेड़ पौधे। और क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई व्यक्ति साल में सिर्फ एक पेड़ भी लगाए, उसकी देखभाल भी करे, तो कुछ ही वर्षों में हमारी धरती का वातावरण कितना बदल सकता है। और पेड़ सिर्फ हमें ऑक्सीजन नहीं देते हैं, बल्कि गर्मी को कम करते हैं, पक्षियों का घर बनते हैं, और इसके साथ ही धरती पर संतुलन भी बनाए रखते हैं। और कुछ इसी तरह का संतुलन अब हम भी बनाए रखेंगे आज के कार्यक्रम जनवाणी में। और आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के शिमला केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार 9:20 पर। और आप सुनते रहिए कार्यक्रम जनवाणी। और अब आपसे मिलेंगे हम सुबह 9:30 पर। और श्रोता हमसे इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर रहेगा 01892224391।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिए सुन्नी, लुहरी और धौलासिद्ध परियोजनाओं को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश। भगवान शिव के जय उद्घोष के बीच श्री अमरनाथ जी की पवित्र तीर्थयात्रा आज से शुरू। हमीरपुर जिला के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के उत्पाद अब ऑनलाइन होंगे उपलब्ध। देश भर के पंचायत मंत्रियों की कार्यशाला आज से दिल्ली में। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर होगी चर्चा। और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी, 49 सड़कें अवरुद्ध। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को सुन्नी, लुहरी और धौलासिद्ध परियोजनाओं को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ये परियोजनाएं सतलुज जल विद्युत निगम को आवंटित की गई है और इनका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री ने शिमला में ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक संसाधनों से राज्य का उचित हिस्सा हासिल करने और जनहित में इनके बेहतर इस्तेमाल को सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने अधिकारियों को एनएचपीसी द्वारा विकसित की जा रही 500 मेगावाट की डुग्गर जल विद्युत परियोजनाओं के नियमों और शर्तों पर दोबारा बातचीत करने के निर्देश भी दिए, क्योंकि एनएचपीसी ने परियोजना में बांध की ऊंचाई बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में राज्य सरकार संशोधित परियोजना के अनुरूप हिमाचल को उचित लाभ सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार ने 500 मेगावाट की किशाऊ बांध परियोजना से जुड़े गतिरोध को समाप्त कर दिया है और अब इस परियोजना में प्रदेश कोई पूंजी निवेश नहीं करना होगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थयात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। श्रद्धालु लगभग 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालटाल स्थित दोहरे बेस कैंप पहुंचा। श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को कल सुबह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना किया था। पहले जत्थे में 4,822 यात्री हैं, जिनमें से 2,510 पहलगाम मार्ग से और 2,312 बालटाल मार्ग से यात्रा करेंगे। यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए दोनों मार्गों पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दोनों मार्गों पर विश्राम स्थल, भोजनालय, स्वास्थ्य सेवाएं और बचाव दल जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। कार्यशाला में पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिसके लिए स्वयं सृजित राजस्व जुटाने को बढ़ावा दिया जाएगा। यह कार्यशाला राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने, कार्यान्वयन चुनौतियों पर चर्चा करने और वित्त आयोग के अनुदानों के प्रभावी उपयोग के लिए व्यवहारिक रणनीतियों का

0: आदान प्रदान करने का मंच भी प्रदान करेगी। हमीरपुर जिला में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के उत्पाद अब ऑनलाइन भी उपलब्ध होंगे। डीआरडीए द्वारा इस संबंध में आरंभ किया गया पंजीकरण अभियान पूरा हो गया है। अधिक जानकारी के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
1: जिले भर के 6 ब्लॉकों से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अब भविन ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म पर स्वदेशी उत्पाद बेच सकेंगी। महिलाओं की सुविधा के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की ओर से शुरू किया गया पंजीकरण अभियान पूर्ण हो गया है। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत स्वयं सहायता समूह लंबे समय से विभिन्न प्रकार के घरेलू हस्तशिल्प खाद एवं पारंपरिक उत्पाद तैयार कर रहे हैं। उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर होने के बावजूद बाजार तक पहुंच सीमित रहने के कारण उन्हें उचित लाभ नहीं मिल पाता था। अधिकांश समूह स्थानीय मेलों, प्रदर्शनियों या आसपास के बाजारों तक ही सीमित रहते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए डीआरडीए ने समूहों को डिजिटल क्षेत्र प्लेटफॉर्म से जोड़ने की योजना तैयार की। अभियान के दौरान समूहों का पंजीकरण करवाने के साथ साथ उन्हें ऑनलाइन बिक्री की प्रक्रिया, उत्पादों की तस्वीरें, ग्राहकों से संपर्क, ऑर्डर, ऑनलाइन भुगतान की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 11 जुलाई को प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति का दौरा करेंगे। अपने इस प्रस्तावित एक दिवसीय दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री केलंग में बनने वाले हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सेंटर का शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
2: लाहौल स्पीति में 11 जुलाई का दिन ऐतिहासिक होने जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा केलांग में ICMR सेंटर फॉर हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ का शिलान्यास करेंगे। ये केंद्र ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर शोध और बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस संस्थान के शुरू होने से लाहौल स्पीति सहित पूरे हिमालय क्षेत्र के लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही उच्च हिमालय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने में भी ये केंद्र अहम भूमिका निभाएगा। पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रवि ठाकुर ने क्षेत्रवासियों से इस ऐतिहासिक अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम का हिस्सा बनने की अपील की है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल होने के दावे को झूठा करार दिया है। भारद्वाज ने शिमला में एक बयान में कहा कि कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं को पार्टी में फिर से शामिल कर रही है और उन्हें भाजपा का कार्यकर्ता बताकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और कांग्रेस के झूठे प्रचार से प्रभावित नहीं होगा।
3: कांग्रेस का ही कार्यकर्ता है, कांग्रेस का ही पदाधिकारी रहा है, वो आज कांग्रेस में शामिल हुआ तो ये भारतीय जनता पार्टी छोड़कर के कांग्रेस में सम्मिलित होने की कैसे बात हुई। हिमाचल की जनता समझदार है, वो कांग्रेस की इस बहकावे में नहीं आएगी। वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा सच्चा निष्ठावान है और जब 6 महीने साल के बाद कांग्रेस की सरकार जाने वाली है, ऐसे भी हिमाचल प्रदेश के कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल नहीं हो। रही बात रामपुर के कार्यकर्ता की जिसने आज कांग्रेस में अपना कदम रखा है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के साथ वो सरकार में चेयरमैन भी रहे हैं और फिर से वो कांग्रेस में सम्मिलित हुए।
0: आकांक्षी जिला चंबा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चनेड़ ने राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाणित PHC बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाला PHC चनेड़ प्रदेश का पहला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन गया है। इस स्वास्थ्य केंद्र को 6 बार कायाकल्प पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे चंबा जिला संवाददाता।
4: राष्ट्रीय मूल्यांकन के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चनेड़ ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए, जो गुणवत्ता मानकों, रोगी संतुष्टि, संक्रमण नियंत्रण, क्लिनिकल सेवाओं, प्रबंधन व्यवस्था तथा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन का प्रमाण है। NQAS भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित एक राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थानों का मूल्यांकन, सेवा प्रदायगी, रोग अधिकार, मानव संसाधन तथा संरचना, संक्रमण नियंत्रण, गुणवत्ता प्रबंधन तथा स्वास्थ्य परिणामों सहित विभिन्न मानकों पर किया जाता है। इस तरह की उपलब्धियों से अवश्य ही जिला चंबा जल्द आकांक्षी जिलों की श्रेणी से बाहर आ पाएगा। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।

0: प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम लगातार जारी है। राज्य के कई हिस्सों में भारी वर्षा से 49 सड़कें अवरुद्ध हो गई है, जबकि बिजली के 42 ट्रांसफार्मर और 27 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई है। आज सुबह से ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून के घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने व सावधानी बरतने को भी कहा गया है। और अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, एसजीवीएनएल ने वापस ली जाएंगी 3 जल विद्युत परियोजनाएं संबंधी खबर आज अधिकांश समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए हैं। अमर उजाला की एक सुर्खी है, बिजली उपभोक्ताओं को राहत, जून में नहीं लगेगा फ्यूल चार्ज, ग्रामीण क्षेत्रों को मिले 162 डॉक्टर, शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है, सरकार ने जारी किए आदेश, जॉब ट्रेनिंग के आधार पर 2 वर्ष के लिए नियुक्ति। दैनिक जागरण हाईकोर्ट के हवाले से लिखता है, कानूनी हक मांगने पर कर्मचारी को प्रताड़ित नहीं कर सकते। दैनिक भास्कर की एक खबर है, करुणामूलक नियुक्तियों पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। मौसम पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, पांगी के घिसल धार में बादल फटने से तबाही, 6 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिए सुन्नी लुहरी और धौलासिद्ध परियोजनाओं को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश। भगवान शिव के जय घोष के बीच श्री अमरनाथ जी की पवित्र तीर्थ यात्रा आज से शुरू। हमीरपुर जिला के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के उत्पाद अब ऑनलाइन होंगे उपलब्ध। देशभर के पंचायत मंत्रियों की कार्यशाला आज से दिल्ली में। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर होगी चर्चा। और प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम जारी, 49 सड़कें अवरुद्ध। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हो चुके हैं। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम जनवाणी।
2: अरे सागर, बड़े खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है?
3: खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
2: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
2: वो कैसे?
3: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
2: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
3: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
2: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
3: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
2: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
3: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
4: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान, सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
6: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
7: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: जी श्रोताओ, 103.4 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र और इस समय आप सुन रहे हैं लाइव फोन इन कार्यक्रम जनवाणी। आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ वंदना रैना। और श्रोताओं, कार्यक्रम जनवाणी में आज हम बात कर रहे हैं उन छोटे छोटे प्रयासों के बारे में जो हमारे पर्यावरण संरक्षण में मदद करते हैं। दोस्तों, अक्सर हम ये सोचते हैं कि अकेले हमारे करने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सच मानिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। अगर हम घर से निकलते समय बिजली के बेकार जलते बल्ब बंद कर दें, प्लास्टिक की जगह कपड़े के बैग का इस्तेमाल करें और पानी की बर्बादी को रोक दें, तो सच मानिए, पर्यावरण संरक्षण में ये एक बहुत बड़ा योगदान होगा। हेलो।
8: हेलो
1: जी, नमस्कार।
8: जी वंदना जी, नमस्ते।
1: नमस्कार, अपना परिचय दीजिए।
8: जी, प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
1: जी प्रेम सिंह जी, कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण की, तो आप अपने घर में पानी बचाने के लिए कौन कौन सी आदतें अपनाते हैं?
8: जी सबसे पहले तो
1: जी, इनसे संपर्क हमारा टूट गया है और अपने सभी सुनने वालों से हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि कृपया सिग्नल में रहकर हमारे स्टूडियो का नंबर मिलाएं, और हमारा फोन नंबर है 018922 4391। हेलो।

जी, इन श्रोता की आवाज़ जो है वो ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से यही कहेंगे कि सिग्नल का पूरा ध्यान रखें ताकि आपने जो नंबर मिलाने के लिए मेहनत की है वो पूरी सफल हो जाए। जी श्रोताओं, कार्यक्रम जनवाणी में आज हम बात कर रहे हैं हमारे पर्यावरण की, और ये पर्यावरण जो है वो ना सिर्फ इस धरती पर खूबसूरती को बढ़ाता है लेकिन ये बहुत सारे वन्य जीवों का आश्रय स्थल भी है, और इसके साथ ही हमें शुद्ध हवा देता है, बारिश लाने में मदद करता है, और कितनी ही खूबियाँ इस पर्यावरण में हैं वो हम गिनवाने जाएँ तो पूरा दिन ही कम पड़ जाएगा। तो श्रोताओं, ये हम सब का कर्तव्य है कि हम मिलजुल कर इस पर्यावरण को खूबसूरत बनाने में सभी का सहयोग करें, सरकार का सहयोग करें और खुद से भी अपनी जिम्मेदारी समझें।

जी श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जनवाणी और कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की संरक्षण की। जी श्रोताओ, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं और साथ ही हमें भी स्वच्छ हवा, साफ पानी और हरियाली देखने के लिए मिले, तो इसके लिए हम खुद से क्या कर रहे हैं, ये एक विचारणीय

0: प्रश्न हैं और यही जानना चाहते हैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे। और आप भी अपने विचार इस संबंध में हमसे साझा कर सकते हैं। उसके लिए डायल करिए हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 01892224391। हेलो
1: हेलो जनवाणी।
0: जी जी, कार्यक्रम जनवाणी में आपका स्वागत है। अपना नाम बताइए।
1: जी, मैं मोरेना मध्य प्रदेश से हरविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: जी तोमर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आप अगर हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं तो आप जानते होंगे कि हम आज बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण की।
1: जी बिल्कुल सुन रहा हूँ।
0: जी तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अपने तौर पर आप अपने घर में अगर पर्यावरण को संरक्षण करना है तो क्या छोटे छोटे प्रयास करते हैं।
1: महोदया कुछ पंक्तियों में बयां करना चाहूंगा, फिर मैं बताऊंगा मैं अपने स्तर पे क्या करता
0: हूं। जी जी, कुछ ही पंक्तियां बोलिएगा क्योंकि दूसरे श्रोता भी लाइन पर है ना।
1: आओ मिलकर पर्यावरण बचाएं, वन उपवन के फूलों से धरा सजाएं।
0: जी,
1: हरी भरी बसुधा वो बागों से चंगुर फैले हरियाली, स्वच्छ सरलो सरिताओं में जीवन में आए खुशहाली।
0: जी,
1: जैविक विधि से अन्न उगाकर प्रदूषित होने से धरा बचाएं, हरे भरे वृक्षों को ना काटें, ये पृथ्वी का श्रृंगार है, सब कुछ देते वृक्ष में मानवता के पालन हारे, पत्थर मारने पर भी फल देते इनका ऋण ये संसार है, पर्यावरण का संरक्षण करें, अति दोहन से इसे बचाएं। ठीक है, संक्षेप में कहूंगा महोदया।
0: जी जी, और तोमर जी आपने पंक्तियां बहुत सुंदर कही हैं और ये चीजें हम सुनते भी हैं और खुद भी कहते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन अपने तौर पर हम प्रयास क्या करते हैं अपने पर्यावरण को बचाने के, तो इसी बारे में आज हम आपसे जानना चाहेंगे।
1: मैं अपने तौर पर प्रयास करता हूँ, प्रति वर्ष बरसात में एक वृक्ष लगाकर उसकी परवरिश करता हूँ।
0: जी जी,
1: इस तरह आज तक मैंने 10-12 वृक्ष लगा दिए, बरगद के हैं, पीपल भी है, सहजन भी है, कनेर भी है,
0: जी
1: अनार भी है, इस तरह के वृक्ष लगा दिए। और दूसरी बात, प्रातः काल में खड़े होकर 2 घंटे झाड़ू लगाता हूँ, गांव गली में मंदिरों में सब स्वच्छ रखता हूँ 12-14 साल से।
0: जी,
1: मेरी दैनिकचर्या है मेरी ये।
0: जी बहुत अच्छी दिनचर्या है।
1: जी, और मैं कृषक हूँ, जैविक विधि से हमेशा अन्न उगाता हूँ, रासायनिक खादों का बहुत कम प्रयोग करता हूँ, बहुत कम मात्रा में, और गोबर की खाद से ही प्रयोग करता हूँ, जैविक विधि से हरी खाद वगैरह से अन्न उगाता हूँ।
0: जी,
1: और फसलों के अवशेष खेतों में कभी नहीं जलाता हूँ क्योंकि उससे पर्यावरण प्रदूषित होता है।
0: जी, और तोमर जी ऐसा लगता है कि हमें आप कुछ प्रयास नहीं, बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं अपने तौर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए।
1: जी,
0: और हमें उम्मीद है कि जो हमारे श्रोता आपको सुन रहे हैं वो आपसे प्रेरणा जरूर लेंगे और कुछ प्रेरणा हम भी आपसे लेते हैं और पर्यावरण संरक्षण के तरफ हम भी कार्य करेंगे। और आज कार्यक्रम में आपने कॉल किया उसके लिए आपका धन्यवाद। जी श्रोताओं, हमारी ये धरती बहुत ही खूबसूरत है और इस धरती को हरियाली में बदलना और साथ ही इसकी हरियाली को बनाए रखना ये हम सबका कर्तव्य है, जिसे हम सबको मिलजुल कर ही करना है। हेलो।
2: हेलो वंदना जी, नमस्कार।
0: नमस्कार राणा जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया है जी, और आपने विषय भी इतना बहुत बढ़िया रखा है कि जिसको जिसकी हमको सभी को जरूरत है।
0: जी राणा जी, तो आप अपने तौर पर क्या कार्य करते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, और खास तौर पर ये जानना चाहेंगे कि पानी को स्वच्छ रखने के लिए और उसे बचाने के लिए आप क्या प्रयास करते हैं?
2: सबसे पहले तो यह है कि कहीं भी जल बहता हो, चाहे नाला हो, नदी हो, उसमें मैं कूड़ा करकट ऐसी कोई गंदी चीज नहीं फेंकता जिससे कि पानी प्रदूषित हो।
0: जी,
2: और दूसरी बात यह है कि कहीं भी कोई म्युनिसिपैलिटी का या किसी सरकारी नल चलता हो तो उसको देख करके मैं सबसे पहले उसको बंद करने की कोशिश करता हूँ।
0: जी जी,
2: क्योंकि पानी की बहुत जरूरत है।
0: जी,
2: और सबसे पहले हमको पर्यावरण संभालने के लिए खुद से ही शुरू करना चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं तो पहले उठकर के अपने शरीर को शुद्ध करें, साफ करें, फिर अपने घर द्वार को साफ करें, और फिर कार्यालय या दुकान मकान जो भी कार्यस्थल है आपके उसको साफ सुथरा रखें, और ख्याल रखें कि जो कूड़ा करकट है उसको एक जगह इकट्ठा करके डस्टबिन में डाले, या कोई कूड़ा लेने वाले आते हैं उसको दे
0: जी।
2: और जगह जगह गंदगी मत डालें, और देखिए ये मौसम इतना बढ़िया है कि इस मौसम में हम कोई भी वृक्ष लगाएंगे तो अपने आप पनप जाएगा, उसको ना तो पानी की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद अगर हम कोई वृक्ष लगा भी देते हैं तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि जब तक वो अपने आप में बड़ा ना हो जाए उसकी देखभाल भी करना जरूरी है।
0: जी राणा जी, बहुत अच्छे विचार हैं आपके और बहुत अच्छे प्रयास भी हैं आपके, और इन प्रयासों की हम सराहना करते हैं। आज आपने कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बेहद शुक्रिया। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप भी हिस्सा ले सकते हैं पर्यावरण संरक्षण

के अपने प्रयासों के बारे में आज कार्यक्रम में आप बात कर सकते हैं, और उसके लिए डायल करें हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर जो है 01892-224391। और अगले कॉलर से बात करने से पहले एक खूबसूरत सा गीत अपने सभी लिसनर्स के लिए।

0: जी श्रोताओं, कुछ ऐसा ही प्रेम हमें दिखाना है अपने पर्यावरण के साथ भी, इन घटाओं के साथ, इन वादियों के साथ, पर्वतों के साथ, पानी के साथ और खास तौर पर वायु के साथ भी।
1: हेलो,
0: हेलो,
1: नमस्कार वंदना जी।
0: जी नमस्कार, अपना परिचय दीजिए।
1: धीरज रबारी बात कर रहा हूँ, गुजरात।
0: जी एक बार फिर से अपना नाम बता दीजिए।
1: धीरज रबारी, गुजरात।
0: जी धीरज जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं कि अपने पर्यावरण को हम किस तरह अपने ही प्रयासों से बचा सकते हैं।
1: जैसे हम देखा

0: कि हम पहले जो हमारा जो जीवन चर्या चलती थी जैसे करते हैं तो पर्यावरण को बचा सकते, जैसे हम खरीदे करने के लिए कापड़ की थैले लेकर जाते थे, बर्तन लेकर जाते थे
1: जी जी।
0: वैसे वृक्षों को पानी तो वैसे अभी भी देते हैं, पहले भी देते थे
1: जी।
0: लेकिन जो पहले की जो हमारी जो दिनचर्या थी वही वापस लाने की जरूरत है दीदी, क्योंकि तभी जाके हम सुरक्षा पर्यावरण के कर पाएंगे।
1: धीरज जी, आप क्या प्रयास करते हैं अपने आसपास के क्षेत्र में जहाँ पर आप रहते हैं ना, पर्यावरण बचाने के लिए?
0: जी, हम पशु पंखी पेड़ उनकी सुरक्षा लिए हमारे जो भी बनता है वो प्रयास करते हैं। देखा जाए तो पर्यावरण के लिए हम खुद कापड़ की थैली लेकर कहीं भी कुछ चीज वस्ती खरीदने के लिए जाते हैं, कहीं पेड़ को पानी की जरूरत है पानी पिलाते हैं, पशु पंखियों के लिए ज्यादातर पंखियों के लिए पानी की बर्तनों को साफ करके रोजाना
1: जी। और बहुत जरूरी हो जाता है कि हम घर पे जब भी पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उसे व्यर्थ ना बहने दें, और इसके साथ ही जो बाहर पानी के क्षेत्र होते हैं जैसे कई जगह नदियां हैं तालाब हैं तो उनमें हम वेस्ट पदार्थ जो हैं वो उसमें ना डालें।
0: बिल्कुल, और अभी जो बारिश की ऋतु है उसमें बहता पानी ज्यादा रहेगा तो उसमें भी हमें आपने बोला वैसा कोई ऐसे पदार्थ नहीं डालने चाहिए, वैसे कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए, और हो सके तो ये जल संग्रह है बारिश का उसको कहीं ऐसी जगह ढूंढे जहाँ पानी उसका जल संग्रह करे ताकि आने वाले समय में वो पानी हमको काम में लगे।
1: जी जी, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये जो वायु है, हवा है, पानी है और साथ ही हमारी धरती है और पेड़ पौधे हैं, इन्हें हमें संभाल के रखना है ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इनका आनंद ले सकें और उन्हें भी स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा और स्वच्छ वायु मिले, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, और देखा जाए तो हमें जो पहले मटके का पानी पीते आज भी पी सकते हैं, क्यों हमें फ्रिज की जरूरत नहीं, लेकिन हम कई ऐसे भौतिक सुखों में अभी चले जाते हैं तो उसमें वापिस आने की जरूरत है, तभी जाके पर्यावरण में ज्यादा हम बदलाव ला सकते हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छी सोच है आपकी और आपने आज कार्यक्रम में कॉल किया, आपका धन्यवाद। जी श्रोताओं, हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं आज कि किस तरह हम अपने पर्यावरण को सहेज कर रख सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। हेलो
2: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से।
1: जी राकेश जी, आपको कार्यक्रम का विषय पता है ना?
2: जी जी जी जी
1: जी, तो बताइए आप क्या करते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए?
2: देखो, मैं पर्यावरण के बचाव के लिए मैं ये करता हूँ, मैं अपनी फैमिली को बोलता हूँ क्योंकि मैं तो खुद ही ब्लाइंड पर्सन हूँ, तो मैं लेकिन मैं ये प्रावधान जरूर करता हूँ कि आप जो है पर्यावरण को बचाने के लिए एक पेड़ जो है जरूर लगाए, और सबसे बड़ी बात है पर्यावरण को बचाने के लिए सिर्फ पेड़ लगाना जरूरी नहीं है, सिर्फ पेड़ की देख रेख भी करना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिससे पर्यावरण का नुकसान होता है तो उस चीज का हमें उपयोग नहीं करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, और कहीं ना कहीं वाहन जो हैं हमारे, है ना, वो भी पर्यावरण प्रदूषण में सहयोग करते हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें।
2: सबसे पहले मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, वाहन तो है ये, जब हमारा कोई त्यौहार आता है जैसे कि खासकर जो दिवाली आती है हमारे
1: जी, जी।
2: पूरे देश में
1: जी।
2: वो क्या करते हैं जो है पटाखे खूब जलाते हैं, लेकिन ये जो हम पटाखे जलाते हैं ये भी पर्यावरण को नुकसान करते
1: जी,
2: हैं।
1: ये सिर्फ दिवाली के लिए ही नहीं, बाकी त्योहार भी या शादियों में भी लोग आजकल पटाखे काफी चलाते हैं ना, तो इससे वायु प्रदूषण होता है।
2: जी जी जी जी, ये भी क्या बोलते हैं हमारे

0: चला है रीयूज़ और रीसाइकल। तो अगर हम
1: रिसाइकल
0: उसका
1: कर सकते
0: इस्तेमाल कर सकें तो बहुत आवश्यक हो जाता है ये पर्यावरण संरक्षण के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे विचार हैं आपके, और कार्यक्रम में यूं ही कॉल करते रहिए। और अब अपने सभी श्रोताओं के लिए ये खूबसूरत सा गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

0: हेलो।
1: हेलो मैम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, अपना परिचय दीजिए।
1: जाना माना स्रोत आपका जयकरण
0: जी
1: सरावगी।
0: जयकरण जी, आज आप क्या कहना चाहेंगे, जरा संक्षेप में अपनी बात कहिएगा।
1: हाँ मैम, मैं यही कहूँगा, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ।
0: जी
1: और मैं आगे यही कहूँगा प्लास्टिक के बारे में, ये जो प्लास्टिक आजकल फैला हुआ है ना, ये कचरा,
0: जी जी
1: ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। आज देखो आप, 100 ग्राम से लेकर 2 के लीटर तक जो है वो उसमें ठंडे पेय आ रहे हैं।
0: जी
1: और जितने भी पब्लिक प्लेस हैं
0: जी
1: उसमें जहीं भी चले जाओ आपको इसका कचरा ज्यादा मिलेगा जी, पड़ा हुआ। तो पहले हम आपको एक बात याद दिलाते हैं, ये आप ठंडा लेते थे दुकान से तो कांच की बोतल होती थी, उसे उसी वक्त वापस करना होता था। अगर आप घर ले जाना चाहते हो उसका चार्ज पहले देना पड़ता था,
0: जी जी
1: क्योंकि कचरा ना फैले जी।
0: जी जयकरण जी, पहले की बात तो चलो ठीक है, लेकिन आज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हो रहा है, लेकिन हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम हर चीज़ का इस्तेमाल इस तरह से करें कि उससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे।
1: जी हम तो करते रहते हैं,
0: चलिए,
1: हम
0: बहुत
1: करेंगे
0: अच्छी
1: भी।
0: बात है, और आज कार्यक्रम में आपने कॉल किया उसके लिए धन्यवाद। तो श्रोताओं, हम यही कहेंगे कि ये धरती हमें अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे खूबसूरत बनाना है अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, और साथ ही अपने खुद के लिए भी। आज हम एक छोटा सा संकल्प लें, हर दिन पर्यावरण के लिए कम से कम एक सकारात्मक काम जरूर करें, और यही छोटे से प्रयास कल को एक बेहतर और हरा भरा भविष्य देंगे।

और श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में यही कहेंगे, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे जरूरी, अपनी प्रकृति से प्यार कीजिए, क्योंकि प्रकृति रहेगी तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। वंदना रैना को अनुमति दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर जतींद्र पाल सिंह और तकनीकी सहयोग हमें दिया विकास पठानिया ने।

सजीव फोनिन कार्यक्रम जनवाणी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 10 बजे हैं। श्रोता लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतों का कारवां।

ये गीत हमारे श्रोताओं ने सुना फिल्म खेल खेल में। इस गीत को गाया था विशाल मिश्रा ने, संगीत तनिष्क वाग्ची का और शब्द रचना कुमार की। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पिंजर से। बेडाली ब्रदर्स जसविंदर नरूला और साथियों की आवाजें हैं। संगीत से सजाया है उत्तम सिंह ने।

गीतों का कारवां, ये कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अपनी रेडियो दोस्त प्रवीण के साथ। कार्यक्रम में अब सुनिए टाइगर जिंदा है इस फिल्म से ये खूबसूरत संगीत। आतिफ असलम की आवाजें हैं, संगीत विशाल शेखर का और शब्द रचना इरशाद।

गीतों का कारवां। एक बार फिर से एक खूबसूरत सा गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं मिशन मजनू फिल्म से। जुबिन नौटियाल की आवाज, तनिष्क वाग्ची का संगीत, शब्द रचना शब्बीर अहमद की।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार की आवाज में। संगीत दिया है पायल देव ने।

इसी के साथ हमारा आज का गीतों का कारवाई कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सुबह के 10:30 हो चुके हैं और हम हाजिर हैं हिमाचली गीत और लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ों के सुर लेकर।

0: हमारे श्रोताओं ने सुना हरिचंद की आवाज में।
1: क्या बात है, खुश तो होना ही है भाई, क्योंकि हिमाचल की हक की लड़ाई में एक और बड़ी सफलता जो मिली है।
2: अच्छा, ऐसी कौन सी खुशखबरी है, हमें भी बताओ।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
2: वो कैसे?
1: करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत और 422 मेगावाट क्षमता वाली किशाऊ परियोजना में बिजली उत्पादन के लिए होने वाले लगभग 2,000 करोड़ रुपए के हिमाचल के हिस्से के खर्च का बोझ अब प्रदेश पर नहीं पड़ेगा।
2: फिर ये खर्च कौन उठाएगा?
1: परियोजना के पानी से लाभान्वित होने वाले दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा राज्य ये खर्च वहन करेंगे।
2: वाह, इससे हिमाचल को क्या फायदा होगा?
1: फायदा ही फायदा। परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू होने पर हिमाचल प्रदेश को हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय सुनिश्चित होगी।
2: यानी प्रदेश के अधिकार भी सुरक्षित और भविष्य भी मजबूत।
1: बिल्कुल, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रदेश हित के लिए लड़ी गई मजबूत पैरवी का परिणाम है।
3: हिमाचल के अधिकारों को दिलाया नया सम्मान। सुक्खू सरकार बना रही समृद्ध प्रदेश की पहचान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: पहाड़ों के सुर, ये कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

पहाड़ों के सुर, ये कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और अब सुनिए कर्नल राणा की आवाज को।

मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप विनोद कुमार से प्रादेशिक समाचार सुनिए। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल मार्गों से शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी है। एक पत्र में प्रधानमंत्री ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल भाजपा कांग्रेस के लोगों को प्रलोभन देकर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट पहुंचा रही है और इसके बावजूद भी भाजपा के मंसूबे पूरे नहीं हो रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह ने मशोबरा पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्विरोध चुने जाने पर खुशी जताते हुए कहा कि भाजपा ने यहाँ भी पंचायत प्रतिनिधियों को लालच देने का प्रयास किया, लेकिन उनकी कोई चाल कामयाब नहीं हुई। अनिरुद्ध सिंह ने भी कहा कि पाला बदलने वाले नेताओं, खासकर विधायकों की आज क्या हालत है, ये किसी से छिपा नहीं है।
1: भाजपा ज्वाइन भी करी है, उनकी हालत क्या है? तो मैं समझता हूँ कि अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। अपना घर अपना ही होता है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, वो अपना घर ही होता है। लोग लालच में आके ये लोग ऊपर लोभ देते हैं। इनके अपने लोग हैं नहीं, ना इनमें काबिलियत है, मैं समझता हूँ इनके लोगों में, ना ही प्रशासन चलाने की ये लोग माता है।
0: प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीपनी भारद्वाज ने कांग्रेस नेताओं द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में शामिल होने के दावे को झूठा करार दिया है। भारद्वाज ने शिमला में एक बयान में कहा कि कांग्रेस अपने ही कार्यकर्ताओं को पार्टी में फिर से शामिल कर रही है और उन्हें भाजपा का कार्यकर्ता बताकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। संदीपनी भारद्वाज ने कहा कि भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और कांग्रेस के झूठे प्रचार से प्रभावित नहीं होगा।
2: कांग्रेस का ही कार्यकर्ता है, कांग्रेस का ही पदाधिकारी रहा है, वो आज कांग्रेस में शामिल हुआ तो ये भारतीय जनता पार्टी छोड़कर के कांग्रेस में सम्मिलित होने की कैसे बात हुई? हिमाचल की जनता समझदार है, वो कांग्रेस की इस बहकावे में नहीं आएगी। वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ा सच्चा निष्ठावान है और जब 6 महीने साल के बाद कांग्रेस की सरकार जाने वाली है, ऐसे भी हिमाचल प्रदेश के कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल नहीं होगा। रही बात रामपुर के इस कार्यकर्ता की जिसने आज कांग्रेस में अपना कदम रखा है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के साथ वो सरकार में चेयरमैन भी रहे हैं और फिर से वो कांग्रेस में सम्मिलित हुए।
0: उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा है कि फोरले निर्माण के दौरान किसानों, राहगीरों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। पठानिया शाहपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण, जल शक्ति, विद्युत, वन और राजस्व विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक में फोरलेन परियोजना से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की गई। पठानिया ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण के दौरान कुल्हों में पानी की समुचित निकासी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बरसात के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त मशीनरी उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। कैलाश फेडरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष बलदेव सिंह ठाकुर ने शिमला में अपना पदभार ग्रहण किया। उन्होंने इस मौके पर इस जिम्मेदारी के लिए मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं का आभार जताया और कहा कि वे सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बलदेव ठाकुर ने कहा कि वे कैलाश फेडरेशन के कामकाज को संगठन के कर्मचारियों और अधिकारियों के सहयोग से गति देंगे। भारतीय सेना के कोर ऑफ सिग्नल्स द्वारा संचालित व्हील्स और वेलर संचार शक्ति मोटरसाइकिल राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत राइडर्स ने विश्व की सबसे लंबी 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित अटल टनल रोहतांग में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अभियान के तहत 10 राइडर्स ने मात्र 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर करीब 10 किलोमीटर लंबी अटल टनल को 9 मिनट 47 सेकेंड में पार किया। सिग्नल्स ऑफिसर इन चीफ व कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल विवेश डोगरा ने कहा कि उपलब्धि कोर ऑफ सिग्नल्स के गौरवशाली इतिहास में एक

0: और स्वर्णिम अध्याय जोड़ती है। उन्होंने इस उपलब्धि के सफल आयोजन में सहयोग प्रदान करने के लिए संबंधित एजेंसियों का आभार भी व्यक्त किया। प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम लगातार जारी है। आज सुबह से ही प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून के घने बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने व सावधानी बरतने को कहा गया है। विभाग के अनुसार भारी वर्षा के कारण जल भराव, भूस्खलन, सड़कें बंद होने, यातायात बाधित होने और बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। इसके साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र से सुने जा रहे थे। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 370।
2: हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11:05 हुए हैं और हम हाजिर हैं जय हिंद की गीतमाला। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे कुछ देशभक्ति गीत।

द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, इस फिल्म से ये देशभक्ति गीत हमारे श्रोता सुन रहे हैं। इस गीत को गाया है सोनू निगम और हरिहरन ने, ए आर रहमान का संगीत।

उस मुल्क की सरहद को कोई। जय हिंद की गीतमाला। ये कार्यक्रम हमारे श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। फिल्म आंखें का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत से सजाया है साहिर लुधियानवी ने।

जावेद अली वरुण ग्रोवर की आवाज में फिल्म डंकी से ये गीत हमने लिया है। संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

अब आप सुनेंगे बॉर्डर फिल्म से ये देशभक्ति गीत, रूप कुमार राठौर और सोनू निगम की आवाजें, अनु मलिक का संगीत है।

किसी अंतिम देशभक्ति गीत के साथ। जय हिंद की गीतमाला ये कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 11:30 होने को हैं और हम हाजिर हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग के साथ।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
3: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
3: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा चलिए, श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है।
3: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
2: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
3: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
2: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
3: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
2: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
3: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
2: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
3: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है
2: जी।
3: लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
2: इसकी कहानी बड़ी रोचक है।

0: 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की। लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
1: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
0: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता
3: है ना साथियों? अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
5: हाँ, 2000 साल पहले।
4: नानी माँ?
6: हाँ निधि।
4: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
6: अरे यहीं हूँ। आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
4: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं? क्या कर रही हो?
6: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
4: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
6: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
4: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
6: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
4: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
6: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
4: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
6: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
4: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
6: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
4: मामा जी, मामा जी।
2: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
4: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
2: ये तो बहुत अच्छी बात है
4: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले। ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
2: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
4: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
2: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
4: अच्छा, भोज वृक्ष?
2: हाँ, भोज वृक्ष

0: हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
1: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है?
0: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
1: अच्छा।
0: और बेटी, मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
2: ये किस भाषा में है?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
2: मामा जी, अब आगे भी बताइए ना।
0: हाँ हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
2: अच्छा।
0: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
2: अच्छा।
0: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
1: अच्छा।
0: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
1: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
1: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
1: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
2: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
2: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
4: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन

0: सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
1: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे
0: जी
1: जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
0: जी
1: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रहीं
0: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया।
1: जी।
0: इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
1: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
2: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कालंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा अखा, तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। ज़हे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा वाह, और
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती,

0: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
1: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
2: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
3: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कायरों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
2: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
3: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
1: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
4: अलख निरंजन।
5: साधु बाबा।
4: अब अच्छा,
5: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
4: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं।
5: क्या?
4: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
5: है?
4: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
5: अच्छा?
4: हाँ,
5: बहुत बड़ी फौज है।
4: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर

0: भी निकलते हैं ना तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है। बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
1: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
0: अच्छा,
1: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
0: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
1: बिल्कुल है।
0: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
1: उसका भी इंतजाम है।
0: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
1: देखो, तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
0: नहीं, बच्चा किसी से नहीं कहेंगे।
1: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
0: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
1: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूं। बदन सिंह रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।
2: पुरुष वेश में लड़ रही रानी के बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
3: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
4: मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
3: हाथी को क्या संभालू रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप, ओह कितना खून बह रहा है।
4: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू।
5: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
4: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
5: नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
4: अच्छा तो गनू बेटा, तू अपनी कटार मुझे दे।
5: रानी माँ,
6: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
7: श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
8: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार।
9: उमंग उमंग उमंग उमंग।
10: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम संबंधी सूचना। हम आपको बता दें कि 5 जुलाई 2026 रविवार के दिन सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम आरोग्य में जानकारी का विषय होगा, मॉनसून में बच्चों की सेहत का कैसे रखें ध्यान। और विषय के संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित होंगे बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत आनंद, और श्रोता उनसे विषय के संबंध में जानकारी हासिल कर सकते हैं रविवार दिनांक 5 जुलाई 2026 सुबह 9 बजे से 10 बजे तक कार्यक्रम आरोग्य में। हमारे स्टूडियो का फोन नंबर रहेगा 01892224391।

सैनिक भाइयों जय हिंद। फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं दीवार फिल्म के इस गीत के साथ। इस गीत को गाया है उदित नारायण और रूप कुमार राठौर ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है सत्या, वो लिखे हैं गुलजार ने और धुन बनाई है विशाल भारद्वाज ने।

सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। रिजु सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है फिल्म खामोशी द म्यूजिकल से। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं जतिन ललित।

कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए के और हेमा सारदेसाई को फिल्म जमीन में। बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए दीवाना फिल्म का ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में। बोल समीर के हैं, संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

सैनिकों के लिए। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनो सखी।

कार्यक्रम सुनो सखी के साथ हम हाजिर हैं आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियो में। दिल से अभिनंदन आभार हमारी सभी सखियों का।

0: आज के इस सुनो सखी कार्यक्रम में। और आज का अंक लेकर हाजिर है आप सभी की रेडियो सखी प्रवीण। तो सखियों, आज है शुक्रवार और आप सब ये बहुत अच्छे से जानती हैं कि शुक्रवार को हम लेकर आते हैं उड़ान। जी हाँ, विशेष कार्यक्रम उड़ान सपनों की, उड़ान हौसलों की, उड़ान संघर्ष की। कहते हैं जब दिल में जुनून हो, जज्बा हो, तो नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है। सखियों, घर की चार दीवारी और चूल्हे चौके से निकलकर जब एक साधारण सी महिला अपने सपनों को एक नई उड़ान देती है, एक नई पहचान देती है, तो रचती है एक नई कहानी और रचा जाता है एक नया इतिहास। तो सखियों, हो जाइए बिल्कुल तैयार। जी हाँ, जानते हैं कि इस समय आप सब अपने अपने रसोई घर में बहुत व्यस्त होंगे, अपना अपना खान पान, दिन का भोजन तैयार कर रहे होंगे, लेकिन शुक्रवार का ये विशेष कार्यक्रम रहता है। जी हाँ, तो हम बिल्कुल तैयार हैं और आपकी सखी भी ये चाहती है कि हमारी सखियाँ तैयार हो जाएँ। थोड़ा सा विराम ले लीजिए, क्योंकि अब हम आपकी मुलाकात एक ऐसी महिला से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने रंगों की दुनिया को चुना, यानी चित्रकला को चुना, और पेंटिंग के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी, इनके संघर्ष की कहानी, इनकी जुवानी। तो मैम, सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका आकाशवाणी धर्मशाला के स्टूडियो में और कार्यक्रम सुनो सखी में।
1: थैंक यू। थैंक यू। मैं रश्मि नाग और मैं पेशे से आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर रही हूँ। मैंने 16 इयर्स मैंने स्कूल में टीचिंग करी है और 16 इयर्स के बाद मैंने शकुंतलम क्रिएटिव सेंटर यहाँ पर स्टार्ट करा।
0: जी रश्मि जी, बहुत कुछ पूछने से पहले आपने बहुत कुछ बता दिया और बहुत खुशी होती है जब हमारी सखियाँ और विशेष तौर पर इतनी सशक्त महिलाएं जब हमसे जुड़ती हैं और अपना परिचय देती हैं, तो मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तो रश्मि जी, जैसे आपने कहा कि आप चित्रकला के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं आपसे कि आपके जीवन का ऐसा कौन सा पड़ाव था, कौन सी आयु में आप जब थे जब आपने चित्रकला के क्षेत्र को चुना?
1: मैं छोटी थी तभी मेरे को पेंटिंग से बहुत प्यार था, कलर रंगों से मुझे बहुत प्यार था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। पेरेंट्स कहते थे नहीं, आई साइड वीक हो जाएंगी, मैं अंधेरे में भी पेंटिंग्स करती रहती थी।
0: जी जी।
1: फिर जब मैं 12th करा मैंने और मेरे फादर की पोस्टिंग हो गई महाराष्ट्र में,
0: जी
1: नासिक में, तो फिर वहाँ पर ग्रेजुएशन करना मुझे इसलिए डिफ़िकल्ट था क्योंकि वहाँ पर महाराष्ट्रियन लैंग्वेज भी, मराठी लैंग्वेज भी आपको लेनी पड़ती।
0: जी, वो सीखनी पड़ेगी।
1: जी। तो फिर वहाँ पर कॉलेज ऑफ आर्ट नासिक का,
0: जी,
1: उसमें मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर वहाँ मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी पेंटिंग।
0: जी, तो रश्मि जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपने बचपन की बात की कि बचपन से ही आपको रंगों से बहुत प्यार था, तो कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं दीवारों को रंगते हैं, कपड़ों को रंगते हैं, यहाँ तक कि अपनी किताबों से कुछ पेज भी फाड़ते हैं, वहाँ पर भी अपना अपनी चित्रकला का प्रदर्शन करते हैं, कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो इस दरमियान जब आप इस तरह की शरारतें करते थे तो आपको थोड़ी डांट भी पड़ती होगी?
1: मैं बहुत क्वाइट बच्चा था, कोई शैतानी नहीं करती थी, लेकिन हाँ मैं चुपचाप अपना, और मुझे इतनी डिसिप्लिन थी कि मुझे पता है कि क्या करना है, हालांकि बहुत छोटे बच्चे को नहीं पता होता
0: जी,
1: लेकिन शायद भगवान का वो था कि मैं जैसे अट्रैक्ट होती थी कि पेपर
0: जी
1: कलर्स, तो उसे कुछ कुछ पेपर पे ही करती थी। तो एज सच कभी नहीं हुआ कि मेरे को पेरेंट्स से डांट पड़ी हो कि भाई ये क्यों कर रहे हो ऐसे कर।
0: यानी रश्मि जी, आपको रंगों के प्रति इतनी रुचि थी कि आपने कभी मौका ही नहीं दिया।
1: हाँ जी
0: जी। तो रश्मि जी, इसके साथ साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि

0: आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: अभी मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों
0: अच्छा,
1: मैरिड हैं। मेरे ग्रैंड सन हैं दो।
0: बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लग रहा है। और हम सखियों को ये बताना चाहते हैं, हमारी सभी सखी सहेलियां सुनो सखी कार्यक्रम सुन रही होंगी, तो हम उनको बता देते हैं कि रश्मि जी को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आप उम्र के इस पड़ाव पर हैं। जी हाँ, और आपने अपनी यात्रा के बारे में तो बता ही दिया। अब सबसे पहले ये बताइए कि ऐसी कौन सी घटना थी जिसने आपके दिल को छुआ?
1: देखिए, सबसे पहले तो ये कि जैसे सारी हम लेडीज़ जो हैं, शुरू में अपने बच्चों को सेटल करना, घर गृहस्थी को देखना, मैं जॉब भी करती थी तो सारा
0: जी
1: कुछ मैनेज करती रहती थी। तब मैंने अपने लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा था, बस स्कूल में जाती थी, पढ़ाती थी, आ जाती थी। फिर धीरे धीरे मेरे बच्चे अच्छे सेटल हो गए, 12th के में ही उनका सिलेक्शन हो गया अच्छे
0: जी
1: अच्छे कॉलेजेस में, एंड टाइमली उनकी मैरिज भी हो गई। उसके बाद मैं फ्री हुई और मतलब मेरा शुरू से ही ये था कि मेरा अपना कुछ ऐसा सेंटर होना चाहिए जहाँ मैं लोगों को सिखाऊं।
0: जी
1: तो मैं पहले दिल्ली में जॉब करती थी, जब मैं हिमाचल धर्मशाला में आए हम लोग, तो मैंने यहाँ क्या देखा कि यहाँ बच्चों में, लेडीज में, गर्ल्स में एक टैलेंट है कलर से लेके, पेंटिंग से लेके, लेकिन उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है।
0: जी यानी उन्हें वो मंच ही नहीं मिलता है।
1: बिल्कुल।
0: जी
1: तो मुझे जैसे हॉलीडेज होती थी तो बच्चे जो हैं इधर उधर हो रहे हैं, कोई टीवी देख रहा है, कुछ कर रहा है, लेडीज जो हैं वो बोर हो रही हैं, गॉसिप कर रही हैं, मतलब एक उनको था नहीं।
0: जी और रश्मि जी, एक इसमें एक बात ये भी रहती है कि अगर बच्चे की रुचि हो भी ना, तो जब वो घर में चारों तरफ रंग रखता है ना, पानी रख रहा है, गिलास बोतल भर के रख रहा है, तरह तरह के ब्रश रख रहा है, तो माता पिता को ये लगता है कि गंदगी ना फैलाए घर में, तो चलो भाई इस सबको बंद करो, थोड़ी सी बैठकर पढ़ाई कर लो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ये होता है। तो फिर मैं यहाँ पर आर्मी स्कूल में टीचर थी, और फिर मुझे लगा कि मैं अपने हस्बैंड से बोली कि मुझे ना यहाँ जॉब करने में मज़ा नहीं आ रहा है, और मैं ना इन बच्चों को देखती हूँ, इनमें तो बहुत टैलेंट है
0: जी
1: लेकिन इनको मौका नहीं मिल रहा
0: इनको
1: है।
0: मौका नहीं मिला।
1: फिर बस मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ पर अपना, मैंने जॉब रिजाइन करा और मैंने क्रिएटिव सेंटर शुरू किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 1000 से ज़्यादा गर्ल्स, लेडीज़, बच्चों को यहाँ पर ट्रेन करा है,
0: बहुत अच्छी बात।
1: और ऑफिसर्स की वाइब्स भी आती थी,
0: जी
1: और वो लोग इतना एंजॉय करते थे क्योंकि मैंने वो एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं बना रखा था कि बस तुमने यहाँ पेंटिंग करनी है, 1 घंटे करनी है, अच्छा ऐसे करो वैसे करो, नहीं,
0: जी
1: मैंने एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर
0: फ्रेंडली
1: बना रखा था। तो बच्चे आते थे और उनको लगता था कि हम नहीं जाएं घर, हम यही मैम के संग, सुबह मैम आती हूँ, शाम को हम जाएं।
0: जी
1: मैंने कभी नहीं रोका उन्हें, और बहुत अच्छा टाइम था। 2005 में मैंने स्टार्ट करा था अपना ये क्रिएटिव सेंटर, और आज उनमें से बहुत सारे बच्चे, मुझे कोई सर्जन बन गया है, कोई एब्रॉड में है, कोई अपना टूरिज्म का काम कर रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी जगह हैं। और वो जब मुझे कभी मिलते हैं, क्योंकि बड़े हो गए हैं,
0: जी
1: पहचानने में नहीं आते, तो वो मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, फिर कहते हैं मैम आप भूल गए, आपने जो
0: और
1: सिखाई थी वो पेंटिंग हमने घर में लगा
0: जी और
1: रखी।
0: रश्मि जी, उस समय आपको जो खुशी मिलती होगी उसका अंदाजा
1: बिल्कुल
0: सिर्फ आप लगा सकते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल बस वही है मेरी, जैसे कह सकते हैं कि आपकी जिंदगी में, सब कहते हैं ना कि एक कमाई,
0: एक कमाई, सच्ची दौलत।
1: वही मेरी है
0: जी
1: कि
0: जी
1: बच्चे आज मुझे देख के खुश होते हैं।
0: रश्मि जी, आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा प्रेरणा आपको किससे मिली चित्रकला के क्षेत्र में जब आप उतरे?
1: मैं इसको ये बोलूंगी कि मैं सिर्फ, जैसे कि होता है ना कि बहती चली गई इसमें,
0: जी
1: और क्योंकि ये रंगों से मुझे बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा, और मैं इंट्रोवर्ट थी तो मैं रंगों से ही बातें करती थी, तो ये मेरा सब कुछ थे।
0: जी हाँ बिल्कुल सही बात रश्मि जी आपने कही कि जब हम जिस चीज़ के प्रति सच्ची लगन रखते

0: तो हम अपना दुख, अपना दर्द, अपनी दिल की भावनाएं उस चीज के साथ बयां करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। और ये बताइए कि जैसे आप चित्रकारी करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो कौन कौन से रंगों का आप इस्तेमाल करते हैं?
1: मैं एक्रेलिक कलर यूज़ करती हूँ, और मैं पेंटिंग्स जो हैं, मैं रियलिस्टिक पेंटिंग्स भी बनाती हूँ
0: जी,
1: लैंडस्केप भी बनाती हूँ, और मैं कांगड़ा मिनिएचर भी बनाती हूँ। और मतलब मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी कि 2009 में, मैंने 2005 में स्टार्ट करा था, 2009 में मैं बीमार हो गई थी, मुझे कैंसर हो गया था, और तब शायद मुझे इस रंगों ने, इस मेरी कला ने ही मुझे उससे बाहर निकाला। तो उसके बाद जब मैं ट्रीटमेंट के बाद आई, तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों का बहुत सपोर्ट था। खैर, मेरा सेंटर कंटिन्यू चल रहा था, कोविड के टाइम मेरा सेंटर बंद करना पड़ा मुझे
0: जी।
1: फिर तब मैंने अपनी पेंटिंग्स करनी शुरू करी, और मैं जो है फिर एग्जीबिशंस लगाने लगी
0: जी।
1: इंडिया में भी मेरी एग्जीबिशंस लगती हैं, जैसे दिल्ली में, जयपुर में, शिमला में और नगर में, इन जगह लगी हैं मेरी एग्जीबिशंस, और बाहर मेरी हंगरी में लगी है और कुआलालंपुर में भी लगी है।
0: जी रश्मि जी, आपको बीच में टोक रहे हैं, और आपसे अभी हमने सुना कि आप कैंसर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो रश्मि जी ये बताइए कि जब आपको इस बीमारी के बारे में पता चला, तो उस समय आपकी परिस्थिति कैसी रही होगी, किस तरह से आपने खुद को संभाला?
1: हाँ, जूझ रही थी, लेकिन अब भी मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, 16 ईयर्स हो गए हैं। हाँ, जब पहली बार मुझे पता चला था तो
0: सुन रही हैं, और हम बिल्कुल 100% ये उम्मीद करते हैं कि रश्मि जी जिस तरह की प्रेरणादायी बातें हमारे साथ और आपके साथ साझा कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हम भी इनसे ज़रूर सीखें। अच्छा रश्मि जी, हम यहाँ पर थोड़ा सा अपनी बातों को विराम देते हैं और आपकी पसंद का एक गीत कार्यक्रम में शामिल करते हैं। तो सखियों, एक छोटा सा संगीत पर अंतराल लेते हैं, और रश्मि जी की पसंद का ये गीत बिल्कुल हमने पहुंचा दिया है आप सभी की रेडियो सेट्स पर।

0: कार्यक्रम सुनो सखी में एक बार फिर से सभी सखियों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग विशेष कार्यक्रम उड़ान। और आज उड़ान में हमारे मेहमान हैं रश्मि, जो बहुत ही सुंदर चित्रकारी करती हैं। चित्रकला के क्षेत्र में इनका विशेष नाम है। तो अपनी बातों को अब हम आगे बढ़ाते हैं और अगला सवाल पूछते हैं रश्मि जी से। रश्मि जी, ये बताइए कि जब आप कोई भी चित्रकारी बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, तो उसमें मुख्य उद्देश्य आपका क्या रहता है?
1: देखिए, मैं ना पेंटिंग्स में पोर्ट्रेट्स भी लेती हूँ, लैंडस्केप भी लेती हूँ और कांगड़ा मिनिएचर भी करती हूँ। मेरा जो मेन उद्देश्य है कि हमारा हिमाचल इतना खूबसूरत है, यहाँ की संस्कृति इतनी खूबसूरत है
0: जी,
1: तो जो अब लुप्त होती जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: यहाँ के हेरिटेज विलेज जो हैं कितने खूबसूरत थे, वो सब खत्म हो रहे हैं,
0: आज बिल्कुल खत्म होने की कगार पर
1: बिल्कुल
0: हैं। जी,
1: तो मैं अपनी पेंटिंग के थ्रू कोशिश कर रही हूँ कि उनको, मैं जो न्यू जनरेशन है उनको पता चले कि उनके दादा उनके पापा
0: जी बिल्कुल
1: कैसी जगह रहते थे,
0: कैसी जगह रहे हैं,
1: रही हैं। और उनकी दादी ने, उनकी मम्मियों ने जब शादियां हुई थी तो क्या कॉस्ट्यूम पहना था। अब आप एक नथ ले लीजिए, चंबा की अलग है, कांगड़ा
0: की अलग है,
1: है ना।
0: इन दोनों में जो नक्काशी की गई है
1: हाँ,
0: वो बिल्कुल अलग है
1: जी। तो मेरी पेंटिंग्स में मैंने कांगड़ा ब्राइड भी ली है, चंबा ब्राइड की भी बनाई है, किन्नौर की हर हाइनेस भी बनाई है मैंने। हर हाइनेस जो पूरे गांव की प्रधान होती है
0: जी,
1: उसका भी पोर्ट्रेट बनाया है। और जो बुजुर्ग हमारे जो अपने पुराने घरों में बैठते थे और सब लोग बात करते थे, मैंने वो भी बनाया है। और जो हमारी खूबसूरती है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है,
0: बिल्कुल
1: हिमाचल की खूबसूरती का
0: उसको शब्दों में बयां करना
1: मुश्किल है,
0: मुश्किल है।
1: बिल्कुल। तो वो मैं पेंटिंग के थ्रू एक्सप्रेस करती
0: जी
1: हूँ।
0: मतलब एक कोशिश आप लगातार कर रहे हैं
1: जी जी
0: कि
1: जी
0: हमारी जो संस्कृति है, हिमाचल की जो लोकल संस्कृति है, उसको सहेज कर रखा जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: और बहुत अच्छी कोशिश है आपकी रश्मि जी, बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: थैंक यू
0: आपको। ये बताइए कि सबसे अच्छी चित्रकारी जो आपके दिल के बेहद करीब हो।
1: मेरी अपर हिमाचल के किन्नौर की जो हर हाइनेस है, जो प्रधान है गांव की, उसको उसकी वेशभूषा के साथ जब मैंने पोर्ट्रेट बनाया, वो मेरे सबसे करीब है। उसे मैं सेल नहीं कर रही हूँ, मतलब उसको जब मैं बनाई थी उसकी स्किन भी फील कर रही थी मैं, उसकी ज्वेलरी जब बना रही थी तो वो मुझे बिल्कुल लग रही थी कि ये चांदी की है, तो चांदी
0: ये बिल्कुल नेचुरल है।
1: तो वो मेरे बहुत जुड़ी हुई है। हालांकि सारी पेंटिंग्स को मैं प्यार करती हूँ क्योंकि,
0: लेकिन कुछ एक खास होता है जो दिल में एक
1: वो खास है मेरे।
0: जी,
1: वो खास है
0: जी। और ये बताइए रश्मि जी कि आप भी एक महिला हैं।
1: हाँ जी।
0: तो जब एक महिला काम करने के लिए घर से बाहर निकलती है, चूल्हा चौका छोड़कर घर से बाहर निकलती है, तो बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है।
1: जी,
0: तो
1: जी।

0: आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ?
1: हाँ होता था, लेकिन कहते हैं ना कि औरतों को शक्ति का रूप कहा
0: जी,
1: जाता है।
0: नौ देवियों का अवतार एक महिला को माना
1: तो
0: जाता है।
1: तो हमारे दो हाथ नहीं होते काम करने के लिए,
0: बाकी जो है वो अदृश्य है। हाँ, सिर्फ दो जो है वो सामने दिख रहे हैं,
1: तो वो सारे यूज होते थे। और हाँ प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन टचवुड मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ, मेरे बच्चे, उन सब का बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने कभी भी मेरे को किसी चीज के लिए
0: मना नहीं करा
1: और ना ही परेशान करा। जैसे बच्चे परेशान करते हैं, सुनना नहीं है,
0: बिल्कुल।
1: अब हम जॉब भी कर रहे हैं, आ भी रहे हैं घर में, तो टच किसी ने, दोनों बच्चों ने नहीं करा।
0: मतलब रश्मि जी, आपको परिवार की तरफ से पूरा सहयोग मिला,
1: पूरा सपोर्ट
0: जी,
1: पूरा
0: और
1: सपोर्ट।
0: बहुत भाग्यशाली हैं आप।
1: हाँ, इसके लिए तो मैं थैंक्स बोलूंगी भगवान को भी और अपने फैमिली मेंबर्स को भी, कि जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट दिया,
0: इतना अच्छा परिवार दिया।
1: हालांकि प्रॉब्लम्स आती रहती हैं लाइफ में, बहुत बड़ी बड़ी भी प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन शायद अगर सपोर्ट नहीं होता तो मैं,
0: तो कहीं ना कहीं आप आज जहां पर हैं वहां नहीं होते।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
0: परिवार का सहयोग हो तो नारी कहीं भी जा सकती है, कहीं भी पहुंच सकती
1: और
0: है।
1: लेकिन एक साथ में एक बात भी बोलूंगी कि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि अरे, ये एक्सक्यूज बना देते हैं कि परिवार का सहयोग नहीं है तो हम नहीं कर
0: नहीं,
1: पा,
0: हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
1: कर सकते हैं
0: जी, बिल्कुल।
1: आप शक्ति हो, आप, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बस हमें अपने पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमें अपने आप से प्यार
0: जो
1: होना चाहिए,
0: अंदर की आवाज है उसे
1: हाँ, सुनना
0: एक बार सुनना है,
1: सुनना चाहिए और अपने आप से प्यार करना चाहिए।
0: बहुत बड़ी बात है कि हर एक महिला जब तक खुद से प्यार नहीं करेगी वो कुछ नहीं कर सकती। जी,
1: तो ये,
0: और रश्मि जी, जब हम काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जैसे आप चित्रकारी कर रहे हैं, तो लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं।
1: हाँ जी,
0: लोग आपको शाबाशी भी देंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो उस समय जब आपको क्रिटिसाइज किया जाता है, आपको आलोचित किया जाता है, आलोचना की जाती है आपके कार्य की, तो उस समय आप किस तरह से इन सारी परिस्थितियों का सामना करते हैं?
1: देखिए, उस समय मुझे थोड़ा दुख लगता है, वो एक नेचुरल है कि कोई आपके बच्चे को बुरा बोल रहा है तो आपको दुख लगेगा।
0: दुख लगेगा,
1: लेकिन फिर आप थोड़ी देर बाद सोचोगे कि अगर हमारे बच्चे के लिए ऐसा बोला जा रहा है तो शायद उसकी भलाई के लिए है
0: जी।
1: तो वही मेरी पेंटिंग्स के संग है कि अगर वो क्रिटिसाइज करते हैं तो मुझे उससे सीखने को ही
0: सीखने
1: मिलता
0: को
1: है,
0: मिल रहा है
1: कि हाँ
0: जी,
1: तो मैं उससे ज्यादा अच्छा काम करती हूँ।
0: बिल्कुल सही बात है। रश्मि जी, आप हमारी महिलाओं को, हमारी सखी सहेलियों को जो इस समय कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: मैं उनसे सिर्फ यही कहूंगी, सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को, अपने आप की सुनो
0: जी।
1: लेकिन तुम्हें जब सुन रहे हो तो ये पता होना चाहिए कि सही
0: है
1: कि गलत है।
0: गलत है जी,
1: ठीक है। अपने जो आपको सही लगे वो सुनना चाहिए, अपने आप से प्यार करना चाहिए और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाना चाहिए और जो भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए।
0: आगे बढ़ना है जी, हाँ, क्योंकि लाइफ में सखी, हमारे जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं। सर्दी है, गर्मी भी आएगी, बरसात भी होगी, यानी परिवर्तन संसार का नियम है। इसी तरह से जब कोई खुशी आती है तो जाहिर सी बात है कि गम भी आएगा।
1: बिल्कुल।
0: गम
1: बिल्कुल।
0: है तो खुशी भी आएगी।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: सुबह है, रात होगी, रात है तो सुबह भी होगी। तो
1: आपने
0: ये नहीं सोचना है कि गम है तो हमें हमेशा दुखी ही रहना है। एक आशा की किरण है, बस उसी किरण के सहारे एक प्यारी सी मुस्कान बनाकर रखिए, अपने कार्यों को नित्य करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और प्रेरणा बनिए सबके लिए।
1: बिल्कुल। और अपने आप को बेचारा मत समझिए
0: जी, बिल्कुल सही बात आपने कही रश्मि जी, और बहुत बढ़िया आपने संदेश दिया हमारी सभी सखियों को कि खुद को बेचारा कभी भी नहीं समझना है। तो इन्हीं बातों के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न कर रहे हैं और एक बार फिर से रश्मि जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि आप कार्यक्रम सुनो सखी और विशेष कार्यक्रम उड़ान के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, इतने अच्छे विचार आपने साझे किए और तमाम सखियों तक आपने अपनी दिल की बातें पहुंचाई, बहुत ही प्रेरणादायी सुझाव दिए, विचार दिए कि परिस्थिति कैसी भी हो, जिंदगी

0: कई उतार चढ़ाव दिखाती है, बस हमें लगातार आगे बढ़ना है, खुद से प्यार करना है, खुद को संभालना है, और जी हाँ, अपने लाइफ को एंजॉय करते रहना है। तो रश्मि जी, एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू सो मच।
0: तो चलते चलते एक खूबसूरत सा गीत, सभी सखियों की नजर।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने को है। अब पहले हिंदी में समाचार, वो 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस न्यायिक क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमेरिकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने देश में 7 के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को

0: रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं की हैं। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam in Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report mentioning the resistance front. The two leaders called for the perpetrators, organizers, and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities, including Al-Qaeda, ISIS, Daesh, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, and their proxies. Prime Minister Sanae Takaichi has since departed from India. Prime Minister Narendra Modi will visit Rajasthan and Gujarat tomorrow. During his visit, he will lay the foundation stone and inaugurate various development projects worth around 1.06 lakh crore rupees in Balotra, Rajasthan. These projects span multiple sectors including petrochemicals, urban transport, railways, roads, renewable energy and power transmission. The Prime Minister will inaugurate the new terminal building at Jodhpur Airport. He will also launch the modified Uran scheme in Jodhpur. He will dedicate India's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex to the nation at Pachpadra in Balotra, marking a landmark achievement in the country's energy and petrochemical sector. Mr. Modi will also lay the foundation stone for phase two of the Jaipur Metro Rail project. The Prime Minister will also hand over appointment letters to around 54,000 youth recruited across various departments of the government of Rajasthan. Later in the evening, the Prime Minister will visit Gujarat, where he will inaugurate the CG semi-outsourced semiconductor assembly and test facility in Sanand. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the India-France strategic partnership is well placed to drive the next phase of sustainable, resilient and innovation-led growth. Addressing the India-France Business Roundtable in Paris, she

घराना फिल्म का गाना था मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार रवि। और ये हमारा सवाल भी था, सभी श्रोताओं ने सही लिखा है, एक आध श्रोता ने गीतकार का नाम गलत बताया है। एक श्रोता की टिप्पणी है, बचपन में हम जहाँ रहते थे वहीं एक नीम का पेड़ था जिस पर झूला बांधा जाता था। एक बार मैं झूल रहा था और झूले को बहुत ऊपर तेज करता हुआ झूल रहा था, तभी पटिए से रस्सी सरक गई और मैं सर के बल नीचे गिर गया। वो तो भगवान की दया से कोई अनहोनी नहीं हुई। ऐसी घटनाएं पहले हुआ करती थी लेकिन तब इम्यूनिटी लोगों की बहुत मजबूत थी, चोट जल्दी से ठीक हो जाती थी, चोट ठीक जल्दी से ठीक हो जाया करता था। और वो चोट भी ऐसी होती थी कि कई बार माँ पिता साथ में होते थे, भाई बहन साथ में होते थे, उनके जो प्यार का फाहा होता था ना, उससे भी चोट हरण हो जाती थी। लेकिन ये जो घटना घटित हुई ये थोड़ी रिस्की थी, तो जब भी कभी आप झूले पर झूलें तो इतनी ऊंचाई तक मत जाएं कि गिरने का डर हो। वैसे भी इतनी ऊंचाई पर अमूमन नहीं जाना चाहिए कि गिरने का डर बना रहे। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि तभी उस मस्ताने परदेसी ने सामने आकर दस्तक दी, मेरी धड़कनें थम गई और मैं अनजाने ही उसकी ओर खींची चली गई। मेरी इबारत से इन्होंने हेर फेर करके लिखा है कुछ। एक श्रोता ने लिखा है कि रिमझिम बरसे बदरवा फिल्म रतन, गायिका जोराबाई अम्बाले वाली। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे यहाँ सावन में झूले का चलन नहीं है, अतः चौखट में ही रस्सी बांधकर बच्चों को हम झुलाते हैं। और अब तो आप बालकनी में, बरांडे में, आंगन में, जो घरों में छत होती है, छतों में कुछ लोहे की छड़ लगाकर झूले डाल लिए जाते हैं, लेकिन वो जो पेड़ के नीचे के झूले की बात होती है वो निराली होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि सचमुच ही तुमने पुकारा और हम इस सुरीले सफर में चले आए, कुछ यादों की बारात लेकर आए और कुछ मौसम का अंदाज लेकर आए। घनघोर छाए बादल कुछ बरस रहे हैं, कुछ गरज रहे हैं, कुछ लुका छिपी खेल रहे हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुबह जब मैं जागा तो मुझे ऐसा लगा कि रात को हमारे शहर अजमेर में झमाझम बारिश हुई है और मैं सोता रहा। सुबह छत पर छतरी लगाकर पहुंचा तो भीगा मौसम, रिमझिम बरसता सावन, खुशी से झूमते पेड़ घर के गार्डन में और आसपास के घरों में, और सामने मनमोहक पहाड़ों का नज़ारा। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि हवाएं, बहारें, फूल और खुशबू, रंग, उमंग, संगीत, सावन का मौसम सच में जादूगर है। कोयल का पंचम महक रहा है और धरती सुगंध की सरगम से गुनगुना उठी है। वैसे तो बसंत के मौसम को ऋतुओं का सिरमौर कहा जाता है, मगर सावन की ऋतु भी कुछ कम नहीं है। ये मौसम अपने रंग भरी कूची से पूरी प्रकृति को सजा देता है। मौसम से बंधे मन लिए घूमते हैं, आँखें ऋतु निहारती हैं और मन उसके मुताबिक शब्दों के मोती चुन गीत गुनगुनाने लगता है। जैसी ऋतु वैसा मन और वैसा ही गीत। लीजिए सुनिए फिल्म मंजिल, बताइए कौन है हीरो, कौन है हीरोइन।

मंजिल फिल्म का गाना था और हमारे सभी श्रोताओं ने लिखा है मौसमी चटर्जी और अमिताभ बच्चन होते हैं। फिल्म मंजिल रिमझिम गिरे सावन मुंबई के बेहतरीन दृश्य में है। मरीन ड्राइव पर फिल्माया गया था ये गाना और बहुत ही सुंदर दृश्य है। मरीन ड्राइव से जो ऊंची ऊंची समंदर की लहरें आती हैं उसी में भीग रहे थे और इस समय तो बारिश के मौसम में वैसा ही नज़ारा है, बिल्कुल सड़कों तक पानी आ जाता है। लेकिन हाँ, खतरा भी होता है, इसलिए हम बार बार श्रोताओं से कहते हैं कि जो भी मुंबई में हैं या घूमने आते हैं, मरीन ड्राइव पर जाते हैं, तो जब ऊंची लहरें उठें और चेतावनी हो तो बहुत नज़दीक ना जाएं, समंदर के नज़दीक ना जाएं, वो ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, बारिश की हर एक बूंद दिल की सूखी ज़मीन पर प्यार का एहसास बनकर उतरती है। बारिश की रिमझिम में भी एक अलग ही सुकून छुपा होता है। भीगी हवाएँ होती हैं, झूमते पेड़ और बरसती फुहारें। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत सावन की रिमझिम फुहारों के बीच जन्म लेने वाले उस प्रेम की कोमल अनुभूति है, जहां प्रकृति, संगीत और मन के भाव एकाकार हो जाते हैं। रिमझिम फुहारें जब धरती को भिगोती हैं, तब मन के सूने कोने में भी अनकहे भाव अंकुरित होने लगते हैं। ये उसी भीगे एहसास की कहानी है, जहां बादलों की गूंज, झूलों की मस्ती और मधुर तरानों की मिठास मिलकर प्रेम को एक शाश्वत स्वर देते हैं। जहां सावन की हर बूंद मानो प्रिय के स्पर्श का आभास कराती है और हर धड़कन एक ही नाम का संगीत बन जाती है। प्रेम का ये रंग ऐसा है, जो एक बार मन पर चढ़ जाए तो हर सावन उसी प्रिय की याद और प्रतीक्षा का उत्साह बन जाता है। तो बताइए, झूले के दौरान जब कभी आपने झूला झूला हो तो क्या प्रिय की याद आई है या प्रिय साथ में रहे हैं? कोई याद है तो ज़रूर साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर। ये झूले वाला है गीत बहु बेगम फिल्म, बताइए कौन है हीरोइन, गीतकार का नाम भी बताइए जरा।

बहू बेगम फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें थी। गीतकार का नाम नहीं बता सकते अभी क्योंकि आपकी ओर से जवाब नहीं आया है, और हीरोइन का नाम पूछा था वो भी अभी हमें नहीं मिला है। तो जब आप जवाब बताएंगे तब हम बताएंगे कि सही जवाब क्या था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में झूलों का बड़ा शौक था, अभी भी झूला देखने पर तो एक बार ज़रूर ही बैठ जाते हैं। पिंक ऊँचा उड़ाने में गिर गई और हाथ टूट गया, तब से थोड़ा डर लगता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि ओ निगाहें मस्ताना, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, इतना तो कह दो तुमसे ही प्यार है। मतलब गाने के बोल इन्होंने लिखे हैं जो हमने इबारत दी थी। और जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर नहीं है उन्हें बता दें कि हम इस प्रोग्राम में एक इबारत लिखते हैं और उस इबारत से श्रोता शब्द ढूंढकर गाने हमें सुझाते हैं, और हम भी पहले से गाने कुछ ढूंढ के रखते हैं और फिर उसी अनुरूप टिप्पणियां आती हैं और श्रोताओं की टिप्पणियां हम इसमें शामिल करते चलते हैं। तो आज की इबारत जरा एक बार हम दोहरा देते हैं जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज

से जुड़े नहीं उनके लिए। रिमझिम बरसता सावन, सावन की एक शाम थी। बाहर रिमझिम सावन की फुहारें बरस रही थी और भीगी फिजाओं में कहीं दूर तराने गूंज रहे थे। सावन में पड़ते हैं झूले, झूले में पवन ने उड़ाया आंचल, घिरे थे बादल, दिल ने कहा घर आजा घिराए बदरा, डैश डैश डैश। तभी निगाहें मस्ताना लिए वो परदेसी सामने आकर खड़ा हो गया। मेरी धड़कनें रुक सी गईं, लगा जैसे उसने पुकारा हो और मैं अनजाने में ही उसकी ओर खींची चली आई। उसी पल लगा जैसे परदेसी मेरा दिल ले गया। तब से हम उसके प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। लगी ऐसी लगन गहरी कि ये नाता जन्म जन्म का बन गया। अब इतना तो कह दो कि तुमसे ही प्यार है, बस एक इकरार की खातिर मैंने बड़ी शिद्दत से रंग ली आज चुनरिया अपने प्रेम के गहरे रंगों में। हुस्न का वो सारा नूर आज आंखों में उतर आया है जो केवल उसी के लिए है। और अब देख रहे हैं कि हमारे श्रोता कौन सी टिप्पणी लेकर आए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत साल पहले हमारे गांव में, गांव के बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ होता था जिसमें सावन के आते ही झूले पड़ जाते थे। औरतें झूलती और गीत गाती थीं। तो अब आगे बढ़ें और अगला गीत सुनवाते हैं आपको। ये जरा बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम।

घर आ जाए घिर आए। कभी आपने किसी के इंतजार में ये गाना गाया है? फिल्म थी छोटे नवाब। अगर गाया है तो जरूर बताइएगा। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और अब हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों की तो बहुत तादाद है, लगभग यूं कहें कि बाढ़ तो नकारात्मक हो जाता है।

0: लेकिन हाँ बहुत लंबी तादाद में टिप्पणियाँ आ रही हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से हम पढ़ते जाएं। ज़रा संक्षेप में लिखिए तो ज़्यादा तादाद में टिप्पणी शामिल हो सके। एक श्रोता ने लिखा है कि मदमस्त मौसम की मादकता को मधुमेह बनाती इबारत है, हुस्न इश्क को ऊर्जा उत्सर्जित करती शीतल बयार, और रिमझिम फुहार मानो प्रकृति प्रदत्त प्रेमांजलि हो और प्रेमी युगल को आवाहन कर रहा हो। इस प्रेम रस में सराबोर हो, सर्वस्व लुटा प्रेम में हो जाओ, रिमझिम के तरानों के सुरीले सरगम सफर का इंतजार है। भाई इंतजार तो खत्म हो चुका है और अब ये सुरीला सफर जारी है। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई आहा आज तो गजब के गाने हैं और हमने आपको देखा था मुंबई में बारिश में भीगते हुए। आप सब भी भीगते हैं बारिश में, आप अपनी यादें भी साझा करते चलिए, और कोई ख़ास याद है, कोई ख़ास बात है तो ज़रूर बताइए। कौन सी वाली बारिश आपको याद आती है, बचपन वाली बारिश या बड़े हुए तब की बारिश? अब तो बारिश से डरते भी होंगे, भीग जाएंगे तो कहीं सर्दी जुकाम हो जाएगा। बचपन में वो डर नहीं था, खौफ नहीं था, क्योंकि ये पता नहीं होता है कि बीमार होने के नुकसान क्या होते हैं। चलिए बहरहाल आगे बढ़ें। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज के गीत तो इबारत में ही छुपे हुए हैं, फिर हम नहीं बताते, पर हाँ शब्द तो बता ही सकते हैं ना। तो सावन झूला, बदरा तराना, परदेसी दिल प्यार, और नूर मस्ताना इकरार, और भी बहुत कुछ है। एक श्रोता ने लिखा है क्योंकि आज सुरीला सफ़र बेहद सुरीला होने वाला है, क्योंकि रिमझिम के तराने लेकर बरसात जो हो रही है, और एक परदेसी आकर मेरा दिल ले गया है जिसके प्यार में हम सारा आलम खो बैठे। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यार भरा नमस्कार और गानों के बोल लिखे हैं, पड़ गए झूले सवन ऋतु आए रे, एक परदेसी मेरा दिल ले गया। दरअसल आज आपके गाने और हमारे गाने बहुत मैच हो रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो गाने हम आप सुनना चाहते हैं वो हम लेकर आए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये मौसम भीगा भीगा, हवा भी ज़्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल, तुमको पाने का इरादा है, और हम घर से छाता लेकर निकलते हैं तो बारिश नहीं होती, और कभी कभी इतनी जोर से होती है कि छाता होकर भी भीगना पड़ता है, और कई बार हवा के कारण छाता उल्टा भी हो जाता है। लेकिन भीगने में क्या मज़ा होता है ये तो आप बताएंगी, रेडियो सखी बताएंगी आज के सुरीला सफ़र प्रोग्राम में। वो तो भाई आप सभी बता रहे हैं ना, और हम तो आपकी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। और एक उन्होंने आगे लिखा है कि आज जाने माने अभिनेता राजकुमार का स्मृति दिन है। राजकुमार संवाद बोलने के उनके विशिष्ट ढंग से जाने जाते थे, और जानी आज उनकी फिल्म के भी कुछ गीत शामिल हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम आगे बढ़ रहे हैं और पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसके लिए हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। तो ज़रा आप बताइए कि कौन है हीरो हीरोइन, शुरू में हम बता चुके हैं वैसे।
1: एक समा है सुहाना, तीर दिल पे चला के, हाँ जरा झुक जाना, हो निगाहें मस्ताना,

0: सितना।
1: पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना था किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत था, देव आनंद और नूतन होते हैं इस फिल्म में, और बहुत सारे श्रोताओं ने दरअसल इस गाने का जिक्र किया था इसलिए ये गाना यहाँ पर बिल्कुल प्रासंगिक था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने सुरीले सफ़र के शुरू में ही फिल्म जगत के ऐसे महाराजा को याद किया जिन्हें दुनिया राजकुमार के नाम से जानती है। सचमुच अद्भुत शख्सियत थी उनकी, गले में स्कार्फ, बात करने का रौबदार तरीका, सफ़ेद जूते पहनकर जब वो जानी कहते थे तो सिनेमा घरों में तालियां रुकने का नाम नहीं लेती थी। यूं तो उन्होंने कई यादगार किरदार निभाए हैं लेकिन मुझे तो बहुत पसंद है उनकी फिल्म वक्त का राजा का किरदार। फिल्म में वो एक चोर थे लेकिन उनका रौब किसी महाराजा से कम नहीं था। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने राजकुमार जी से जुड़ी हुई लिखी हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है, सावन के झूले सिर्फ झूला नहीं है, मन की उड़ान और भावनाओं का उत्सव है, आनंद है, और ये आनंद स्वयं के अकेले प्राप्त करने से नहीं दूसरों को देने से भी है, तभी आनंद की अनुभूति सार्थक है। सावन के आते ही हरियाली छाती है, धरती को झुलसती गर्मी से राहत मिलती है, हवाओं में कोमल और रेशमी ठंडक के साथ मिट्टी की सौंधी महक घुलती जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी टिप्पणी तो सिर्फ एक लाइन की है तो शामिल नहीं हुई भाई, लेकिन आगे तो आपने कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ इतनी सी शिकायत लिखी तो कैसे शामिल हो सकती है। बहरहाल एक श्रोता ने लिखा है कि इतने दिन से मौसम और बारिश के गीत बज रहे हैं लेकिन आज का प्रोग्राम हमारे शहर के मौसम से मैच हुआ है, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आप सभी का। सुनिए अब ये गीत और याद कीजिए अपनी कोई ख़ास बात। संगीतकार का नाम ज़रा बताइए और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात भी बताइए। बारिश का मौसम और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई बात है बताइएगा जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। गीतकार कौन है ये भी बताइए। फिल्म है दुल्हन एक रात की,

हमने आपसे पूछा था कि कौन है संगीतकार और उन संगीतकार से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात है। बहुत सारे श्रोताओं ने, कुछ श्रोताओं ने जवाब सटीक दिया है, संगीतकार मदन मोहन। और ये जो जुलाई का भीगा मौसम है, बार बार मदन मोहन की याद दिलाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो भीगे मौसम से हमारे मन से जुड़ जाते हैं। 14 जुलाई मदन मोहन साहब की याद का दिन है, उनका स्मृति दिवस है। कुछ श्रोताओं ने सही सही लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि सावन के झूले केवल डालियों पर नहीं पड़ते, वे तो हर बरस हमारे मन में भी बचपन की मीठी यादों को फिर से झूला झुलाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं चेरापूंजी से लिख रहा हूँ, मेरा यहाँ पर उठना बैठना सोना जागना सब कुछ बरसात में ही होता है और विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा मेरे साथ रहती है। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में नाजायज़ फिल्म का गीत सुनवाइए। एक श्रोता ने लिखा है, सावन के झूले सिर्फ झूले नहीं, मन की उड़ान और भावनाओं का उत्सव है, आनंद है, और ये आनंद स्वयं के अकेले प्राप्त करने से नहीं, दूसरों को देने से भी है, तभी यह आनंद की अनुभूति सार्थक है। सावन के आते ही हरियाली छाती है, धरती को झुलसती गर्मी से राहत मिलती है। भाई, अभी जो चेरापूंजी से जो श्रोता लिख रहे हैं कि विविध भारती सुन रहे हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है ये जानकर कि उतनी दूर से विविध भारती से जुड़े हुए हैं। ज़रा वहाँ के कुछ आबोहवा के बारे में, वहाँ के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, और ये भी बताइए कि जब हमेशा बरसात होती है तो आपको एहसास कैसा होता है, क्योंकि जब लगातार बारिश हो तो कई बार ऊब भी होती है एक ही मौसम से। जैसे मुंबई में भी तकरीबन 4-5 महीने बारिश होती रहती है, तो बारिश की शुरुआत तो बड़ी सुखद लगती है, लेकिन धीरे धीरे ऊब सी होने लगती है। तो बहुत सारे इलाके हैं जहाँ घनघोर बरसात होती है, तो आप अपने बारिश से जुड़े हुए अनुभव साझा करते रहिए। और जो आप, जिन श्रोता ने चेरापूंजी से लिखा, उनसे खास अनुरोध कि आप अपने अनुभव लिखिए। हाँ, तो दोस्तों, हमने आपसे ये पूछा था कि संगीतकार का नाम मदन मोहन और फिल्म थी दुल्हन एक रात की, इसी फिल्म का गाना हमने अभी सुनवाया लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्दकार थे राजा मेहदी अली खां। और जब बात चलती है मदन मोहन की, तो लगता है कि जुलाई के इस महीने में उनकी याद का दिन है और जून में उनका जन्मदिन, तो फिर क्यों न एक गाना और हो जाए। तो मदन मोहन साहब के नाम ये गाना, और ज़रा फिल्म का नाम आप बूझिए, क्या है फिल्म का नाम।

फिल्म थी वो कौन थी, और यही था हमारा सवाल। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, राजा मेहदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत था। एक आध श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया, फिल्म का नाम वो कौन थी। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि 1992 में तलाजा से ऊंचे गांव में मेरे मित्र, उनके पिताजी दोनों अपने बेटों के साथ जा रहे थे कार से, और जब लौटे तो एक नदी थी जो भर आई थी, जिसकी वजह से गांव के उस पार

जाना मुश्किल था। कुछ इन्होंने अलग भाषा में लिखी है जिसको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, अगर गलत हो तो भाई माफ़ कीजिएगा। आगे इन्होंने लिखा है कि हम गांव तो चले गए, खाना खाकर लौटे, सड़क पर पानी भर गया था। ये बारिश धीमे धीमे बरस रही थी लेकिन पानी उतर नहीं रहा था, मतलब पानी ज़्यादा हो गया था। तब तक तो पूरी रात रोड पर ही बितानी पड़ी थी। एक श्रोता ने लिखा है कि बारिश और पानी की बातें हैं, मुझे दो बूंद पानी फिल्म का शीर्षक गीत याद आ रहा है, राजस्थान का खाली नहर, और बारिश होने पर नहर भरे, वहाँ के लोगों को जीवन मिले। अब सुनते हैं सारंगा फिल्म का ये गाना, ज़रा आपको बताना है गीतकार और संगीतकार का नाम, देखते हैं कौन श्रोता सही जवाब दे पाते हैं, गीतकार संगीतकार, फिल्म सारंगा, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें हैं।

सारंगा फिल्म का ये गाना था। लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ें, गीतकार भरत व्यास, संगीतकार सरदार मलिक। बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में 2 महीने की छुट्टियों के बाद जुलाई के पहले हफ्ते में स्कूल खुलते थे और एक परदेसी सामने आकर खड़ा हो जाता था। वो परदेसी कोई और नहीं था बल्कि एक रिक्शा वाला था जो स्कूल ले जाने के लिए किसी यमराज से कम नहीं लगता था। भाई अगर स्कूल नहीं गए होते, पढ़ाई नहीं की होती तो आज क्या होते, ये याद कीजिए। और बचपन का संसार बड़ा अलग ही होता है, बहुत सारी बातें होती हैं। बहरहाल अब तो बहुत ही कम वक्त है कि हम आपसे कहें कि यादें साझा कीजिए। बस प्रोग्राम का आखिरी गीत है जिससे पहले हम ये टिप्पणी पढ़कर सुना दें। एक श्रोता ने लिखा है कि बादल मेरे शहर में है, बारिश होगी कि नहीं कह नहीं सकती, पर आज मुझे खुशी है कि सब्जेक्ट के रूप में मैं पास हो रही हूँ, जवाब दे रही हूँ सही। और एक श्रोता ने, मैंने रंगली आज चुनरिया के प्रेम के समर्पण की बात की है कि मन के उल्लास का बेहद मधुर गीत है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज मेरे सुझाए 4 गाने शामिल हुए, कुछ ने लिखा है कि 3 गाने शामिल हुए, किसी ने लिखा है मेरे

6 गाने मेरी पसंद के शामिल हुए। बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लग रहा जानकर। सुनिए, एक श्रोता ने इस गाने का भी जिक्र किया है और आप सब में से कितने लोगों ने सोचा था ये गाना बजेगा अभी। फिल्म है फागुन। कोई सवाल नहीं है, आप चाहे जो जानकारी दे सकते हैं। कमर जलालाबादी के बोल, आशा भोसले, मोहम्मद रफी की आवाजें, प्रोग्राम का आखिरी गाना।

फागुन फिल्म का गाना था और बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि हमने सुझाया था ये गाना, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी पसंद और हमारी पसंद एक हो गई। और एक श्रोता ने जानकारी दी, एक या कई श्रोताओं ने, कि फिल्म फागुन मधुबाला और भारत भूषण संगीतकार ओपी नैयर, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें, कमर जलालाबादी के बोल। अब प्रोग्राम का सफ़र आज बस इतना ही। प्रोग्राम का सफ़र आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 35वीं कड़ी।

0: राष्ट्रध्वज आज हमारा राष्ट्रीय सम्मान बिंदु है। भारतीय संस्कृति में भी ध्वज का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय युद्धों में अग्रभाग में रहने वाले ध्वज की प्रतिष्ठा को सबसे अधिक संभाल कर रखा गया है। रामायण महाभारत काल में प्रमुख योद्धाओं के अपने अपने अलग अलग ध्वज होते थे। इतिहास काल में महाराणा प्रताप का चांगी नामक सूर्य के चित्र वाला ध्वज प्रसिद्ध था। छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा ध्वज हिंदवी स्वराज्य का प्रतीक था। आगे चलकर पेशवाओं के काल में यह ध्वज उत्तर में अटक तक फहराया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध यह लड़ाई भले ही प्रत्यक्ष रणभूमि पर आमने सामने की न रही हो, फिर भी अंग्रेजों के यूनियन जैक को चुनौती देने के लिए ऐसे एक ध्वज की आवश्यकता थी। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी एक ध्वज के नीचे नहीं लड़ा गया था। ब्रिटिश राज सत्ता से जूझते समय भारत का अपना एक स्वतंत्र पहचान वाला राष्ट्र ध्वज हो, यह सोच सन 1900 के बाद सामने आई।
1: 1905 में बनारस में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में स्वदेशी वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी में भारत का विशेष रूप से तैयार किया गया पहला ध्वज भगिनी निवेदिता ने प्रदर्शित किया था। उस पर वंदे मातरम शब्द बांग्ला लिपि में लिखे हुए थे। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को जो पहली बड़ी सभा हुई थी, उस सभा को एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में फिर से 7 अगस्त 1906 को एक सभा आयोजित की गई थी। कलकत्ता के पारसी बाग में हुई उस सभा में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के हाथों वंदे मातरम शब्दों वाला ध्वज फहराया गया। ये ध्वज कृष्ण कुमार मित्र, उनके दामाद सचिंद्रनाथ बोस, पुत्र सुकुमार मित्र, स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्रनाथ दत्त की कल्पना से तैयार हुआ था। ऊपर की हरी पट्टी पर खिलते हुए 8 कमल थे और सबसे नीचे की लाल पट्टी पर चांद सूरज अंकित थे। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम शब्द लिखे थे।
0: बाद के विभिन्न विरोधी आंदोलनों की अनेक सभाओं में यह ध्वज फहराया गया। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द होने तक यह वंदे मातरम शब्दों वाला ध्वज लगातार उपयोग में लाया जाता रहा। इसे ही भारत का अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष के आधुनिक कालखंड में फहराया गया आद्य राष्ट्र ध्वज माना जाता है। इस ध्वज का प्रभाव देश में ही नहीं बल्कि विदेश में रहने वाले भारतीयों के मन पर भी पड़ा था। इस ध्वज से प्रेरणा लेकर उन्हें विदेश में भी अपना ध्वज फहराने की प्रबल इच्छा हुई होगी।
1: इसके ठीक एक वर्ष बाद 21 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के अधिवेशन में भारत की प्रतिनिधि के रूप में फ्रांस से गई मादाम भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखने वाली थी, ये निश्चित हो गया था। उसी समय ध्यान में आया कि इस अधिवेशन में प्रदर्शित करने के लिए अपना स्वयं का ध्वज होना चाहिए। लंदन में पढ़ रहे सावरकर, मादाम कामा और सरदार सिंह राणा के बीच चर्चा होने लगी। अन्य देशों के तत्कालीन ध्वजों को देखते हुए अपना ध्वज भी 3 रंगों वाला विशिष्ट होना चाहिए, ऐसी कल्पना साकार हुई। ये ध्वज बनाते समय लंदन में ही पढ़ रहे कलाकार क्रांतिकारी हेमचंद्र दास कानुनगो की सहायता मिली।
0: अगस्त 1907 अधिवेशन का तीसरा दिन। सफेद साड़ी पहने हुए, पारसी पद्धति से सिर पर पल्लू लिए हुए मादाम कामा ने अपने पल्लू के नीचे छिपाया हुआ वह रंगीन ध्वज अचानक सबके सामने दोनों हाथों से ऊंचा उठा दिया। उस समय पूरे सभागृह में मादाम कामा की शुभ्र मूर्ति के कारण बिजली कौंधने जैसा आभास सारे सभागृह को हुआ। इस रंगीन ध्वज के रंग भी उतने ही तेजस्वी थे। मादाम कामा के सहज तेज को शोभा

0: ध्वज की ऊपरी पट्टी हरी थी, उस पर 8 प्रांतों के प्रतीक 8 कमल, बीच का रंग केसरिया और उस केसरिया पृष्ठभूमि पर भारतीय स्वतंत्रता के शब्द रूपी हुंकार वंदे मातरम और सबसे नीचे की लाल पट्टी पर एक ओर सूर्य तो दूसरी ओर चंद्रमा थे। ये तीनों रंग जातियों या धर्मों के रंग नहीं थे, ये भारतीय संस्कृति के रंगों और मानव जीवन के गुणात्मक अर्थ को बताने वाले थे। हरा रंग धैर्य और उत्साह का, केसरिया रंग विजय और वैराग्यपूर्ण जीवन का, तो लाल शक्ति का प्रतीक था। 8 कमल भारत के उस समय के 8 प्रांतों के प्रतीक थे, तो चांद सूरज शीतलता और ऊर्जा के प्रतीक थे।
1: मादाम कामा ने भारतीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखते हुए पल्लू में छिपाकर लाया हुआ ध्वज बाहर निकालकर ऊंचा उठाते हुए कहा,
2: दिस इज द फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, बिहोल्ड इट इज बॉर्न, इट इज ऑलरेडी सैंक्टिफाइड बाय द ब्लड।
3: ये भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज है, देखो इसका जन्म हो चुका है, ये पहले ही भारत के शहीदों के रक्त से पवित्र हो चुका है। मैं आप सभी सज्जनों से आह्वान करती हूँ कि उठे और इस ध्वज को सलाम करें। मैं आपके सामने ये छोटा सा भारतीय ध्वज फहराती हूँ मित्रों, और भारतीय राष्ट्र के नाम पर आपसे न्याय के लिए लड़ने का आग्रह करती हूँ। मैं आपके सामने ये भारतीय ध्वज एक बार फहराती हूँ, और समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे अपने जीवन काल में ही भारतीय गणराज्य की स्थापना देखने की पूरी आशा है। इंडिया एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग माई लाइफ टाइम। वंदे मातरम।

विदेश में भारत का स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित किया गया यह पहला ध्वज था। इस ध्वज पर भी बीच में वंदे मातरम शब्द लिखे थे। अंतरराष्ट्रीय परिषद में इस ध्वज ने खलबली मचा दी। ऐतिहासिक मादाम कामा के ध्वज और इस कलकत्ता ध्वज में समानता है। इस ध्वज का चित्र या प्रतिकृति भारतीय क्रांतिकारियों के माध्यम से विदेश में क्रांतिकारियों तक पहुंची होगी। इन दोनों ध्वजों में महत्वपूर्ण अंतर यह था कि वंदे मातरम शब्द दोनों ध्वजों पर होने के बावजूद कलकत्ता ध्वज पर वे पीले रंग की पृष्ठभूमि पर नीले रंग में थे, जबकि मादाम कामा के ध्वज पर वे सफेद रंग में थे, और वंदे मातरम में म अक्षर हटाकर र अक्षर पर अनुस्वार लगाया गया था। 20वीं सदी के पहले दशक में एक एक वर्ष के अंतराल पर बनाए गए भारत के पहले तीनों ध्वजों पर वंदे मातरम शब्दों को ही अग्रस्थान मिलना यही विशेषता है।

आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

सुन रहे थे वंदे मातरम एक जय घोष, इस श्रृंखला की 35वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, सहभागी कलाकार नेहा देसाई, तकनीकी सहयोग रमेश धकाते, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान

0: शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
1: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
2: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
0: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
3: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के 2 जबरदस्त भूकंप आए जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल

इंडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है।

प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
1: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुड़ी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
3: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23

0: अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

पाकीज़ा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। कैफ भोपाली के बोल थे, गुलाम मोहम्मद का संगीत था। आइए अब सुनते हैं काजल फिल्म का गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, रवि का संगीत।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: ऊंचे लोग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार चित्रगुप्त।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: हमराज फिल्म का गाना आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में। रचना थी साहिल लुधियानवी की, संगीतकार थे रवि। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ये प्रोग्राम का आखिरी गाना है। फिल्म है नूर महल, सुमन कल्याणपुर की आवाज, सबा अफगानी के बोल हैं, जानी बाबू कव्वाल का संगीत है।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 3 बजने को है कुछ ही देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। तीर्थ यात्रियों को लिखे एक पत्र में प्रधानमंत्री ने

0: वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। उन्होंने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करना, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करके और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि अमरनाथ यात्रा आस्था, सांस्कृतिक एकता और सेवा के मूल्यों को मजबूत करती रहेगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से चिकित्सकों, पैरामेडिकल व तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भर रही है। मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी शिमला और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाणा के निदान विभागों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने सीटी स्कैन, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी निदान सेवाओं में 0 प्रतीक्षा अवधि सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी के चिकित्सकों की मांग पर संस्थान को जल्द ही 256 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्वास्थ्य अवसंरचना को व्यापक रूप से सशक्त बना रही है। प्रदेश सरकार ने राज्य वन विकास निगम के कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित निगम के निदेशक मंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इसके अलावा ₹21,000 तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले 175 कर्मचारियों को बोनस देने की मंजूरी भी दी गई। इस दौरान प्रदेश सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की भी स्वीकृति दी गई, जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 240 दिन का कार्य पूरा किया है। वहीं प्रदेश सरकार की नीति के अनुरूप पात्र अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण का निर्णय भी बैठक में लिया गया। निदेशक मंडल ने विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी ₹425 से बढ़ाकर ₹450 करने को भी स्वीकृति दी। ये संशोधन 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। सिरमौरी लोहिया को जीआई टैग मिलने पर हाटी विकास मंच ने प्रसन्नता जताई है। मंच के सदस्यों ने कहा कि ये सिरमौर जिला विशेषकर गिरिपार क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक हस्तकला और स्थानीय बुनकरों की पीढ़ियों से चली आ रही उत्कृष्ट कला का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान है। उन्होंने सरकार से सिरमौर और गिरिपार क्षेत्र की अन्य पारंपरिक कलाओं, हस्तशिल्प, कृषि और खाद्य उत्पादों का वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण कर उन्हें भी चरणबद्ध तरीके से जीआई पंजीकरण दिलाने का आग्रह किया है।
1: आज हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। जिला सिरमौर का जो एक हमारा उत्पाद है लोहिया, जो हम लोगों ने पहना है, जीआई टैग उसको मिला हुआ है। जीआई टैग की जो सौगात है वो बहुत ही अमूल्य है। हमें हर्ष है कि जिला सिरमौर के एक जो वस्तु है उसको जीआई टैग मिला है। काफी समय से लोगों की डिमांड थी, ये जो लोहिया है सांस्कृतिक धरोहर है, इसका जीआई टैग होना अति आवश्यक है। समय समय पर प्रदेश हाटी विकास मंच और अन्य संगठनों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष इस मुद्दे को बड़े ही जोर शोर से उठाया था। परिणाम स्वरूप हमें इसकी अमूल्य सौगात मिली है। अब क्या होगा, जैसे ही लोहिया का जो स्थानीय उत्पाद है वो अब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इसको रिकॉग्निशन, मान्यता मिलेगी।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं सामयिक चर्चा। आज का विषय है NCW महिला हेल्पलाइन, महिलाओं की सहायता के लिए समर्पित एक मंच। वाचक स्वर प्रभा शर्मा का है। महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करना एक समावेशी और न्याय संगत समाज के लिए आवश्यक है। सुलभ और उत्तरदायी सार्वजनिक सेवा तंत्र,

0: मुद्दों का निवारण करने और सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा व बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष वैधानिक निकाय है। ये महिलाओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने और उनके कल्याण व सशक्तिकरण की वकालत करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहल में दहेज, समान रोजगार के अवसर और श्रम शोषण आदि विषय शामिल हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग को महिलाओं के प्रतिवर्ष घरेलू हिंसा और अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार से संबंधित हजारों शिकायतें मिलती हैं। इस तरह के दुर्व्यवहार महिलाओं के मानसिक कल्याण पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए इसके लिए पेशेवर मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता होती है। संकट में महिलाओं की सहायता के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग 24 घंटे महिला हेल्पलाइन 1449 संचालित करता है, जो हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए एक डिजिटल शिकायत पंजीकरण प्रणाली प्रदान करता है। ये टोल फ्री नंबर राष्ट्रीय महिला आयोग की मौजूदा हेल्पलाइन 7827170170 से जुड़े एक आसानी से याद रखने वाले शॉर्ट कोड के रूप में कार्य करता है। 18 वर्ष से अधिक आयु की कोई भी महिला या लड़की हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकती है। ये महिलाओं की शिकायत दर्ज करने और तत्काल सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ये प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श संस्थानों द्वारा संचालित है। ये जरूरतमंद लोगों के लिए पेशेवर और सुगम हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की महिला हेल्पलाइन सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच और शिकायत निवारण में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर डिजिटल इंडिया के सिद्धांतों का उदाहरण है। हेल्पलाइन किसी भी समय सहायता प्राप्त करने के लिए 2400 घंटे डिजिटल शिकायत पंजीकरण प्रणाली प्रदान करती है। हेल्पलाइन शिकायत पंजीकरण मनोवैज्ञानिक परामर्श रेफरल सहायता और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी के लिए एक डिजिटल एक्सेस पॉइंट की सुविधा प्रदान करती है। ये सहायता सेवाओं को अधिक सुलभ और नागरिक केंद्र बनाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की मौजूदा हेल्पलाइन से जुड़ा एक राष्ट्रव्यापी नंबर प्रदान करके ये पहल विशेष रूप से आपातकालीन स्थिति में सहायता तक त्वरित पहुंच को सक्षम बनाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग को प्राप्त शिकायतें महिलाओं के प्रति अपराधों की प्रकृति और प्रवृत्तियों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ये विश्लेषण महिलाओं के खिलाफ हिंसा को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार संस्थानों के कामकाज में अंतराल की पहचान करने में मदद करता है। इसके निष्कर्ष ऐसे मामलों की प्रतिक्रिया में सुधार के लिए सुधारात्मक उपायों के लिए सिफारिशों का समर्थन करते हैं। पुलिसकर्मियों, न्यायिक अधिकारियों, अभियोजकों, फॉरेंसिक वैज्ञानिकों, बचाव वकीलों और अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रमों के दौरान शिकायतों का उपयोग केस स्टडी के रूप में भी किया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग शिकायतों की जांच करने और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करता है। आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले आयोग के अधिकार क्षेत्र के अनुसार शिकायतों की समीक्षा की जाती है। शिकायतों की जांच पड़ताल की जाती है ताकि ये तय किया जा सके कि वे आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती हैं या नहीं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाली शिकायतों को रजिस्टर किया जाता है और उन्हें एक यूनिक केस नंबर दिया जाता है। जो शिकायतें अधिकार क्षेत्र में नहीं आती उन्हें शिकायतकर्ता को सूचित करने के बाद बंद कर दिया जाता है। मामले की प्रकृति के आधार पर पंजीकृत शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है। शिकायतकर्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है: पुलिस जांच में तेजी लाना, निगरानी करना, वैधानिक प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन की निगरानी करना, मध्यस्थता परामर्श के माध्यम से मुद्दों का समाधान करना है।
1: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
2: जी ऊपर वाले फ्लैट में कर रही हूँ। अच्छा। हमारा एक माले का घर है ना, वहाँ कर रही हूँ
3: जी।
2: तो मैं नीचे से यहाँ

0: जाती
1: अच्छा, मतलब आप पहली मंजिल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे और ऊपर ऊपर की मंजिल अपने आप कर
0: हूँ।
1: पाती
0: हाँ
1: हैं ये सब?
0: अब खुद आप कर लेती हूँ। एक बार मुझे अगर अंदाजा हो जाए ना कि किस तरह जाना है, किस तरह से आना है, किस तरह आना है, तो मैं अपना आप ही सब कर लेती हूँ।
1: बहुत सुंदर बात है। मुझे ये बताइए आलिया जी कि सुख और दुख जीवन में तो सबके आते हैं, है ना? कठिनाइयां भी आती हैं, गम भी आते हैं, खुशियां भी आती हैं, आप इसको किस
0: बहुत
1: तरह से
0: खुश,
1: लेती हैं?
0: मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। ऐसे तो ऊपर वाले ने मेरी आंखें छीन ली है मैडम, मुझे बहुत बुरा लगता है कभी कभी, पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि जिस हाल में खुदा रखे है उस हाल में ही रह लेना चाहिए। मैं ऊपर वाले से शिकवा भी करूंगी तो क्या हासिल होगा मुझे शिकवा करके भी। हाँ,
1: जी
0: लेकिन ऊपर वाले से मैं दुआ जरूर मांगती हूँ। कभी कभी मुझे रोना भी आ जाता है ईद त्योहार पर, जब सब लड़कियां बॉयफ्रेंडों के साथ, सहेलियों के साथ घूमती है, तो मुझे रोना भी आ जाता है कि मेरे साथ
1: जी
0: ही क्या हो रहा है। लेकिन
1: जी
0: फिर मैं अपने आंख में आंसू नहीं आने देती, ऊपर वाले से शिकवा नहीं करती। मैं ऐसा
1: देखिए
0: सोचती हूँ कि ऊपर वाला जिस हाल में रखे उस हाल में ही रह
1: जी
0: लेना
1: जी
0: चाहिए।
1: तो ये देखिए कितनी हिम्मत की बात है कि आपके पास आंखें नहीं है
0: हाँ
1: फिर भी हमेशा खुश रहने की कोशिश करती हैं। आपकी बातें सुन के
0: हाँ
1: हमें बहुत अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि हमारी सारी सखियां जो सुन रही होगी ये कार्यक्रम, अगर ज़िंदगी में छोटी मोटी कठिनाइयां आएंगी तो अब शिकायत तो नहीं करेंगी। लेकिन हम आलिया जी आज जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मैडम, बारिश का मौसम आया है तो मुझे बारिश का गाना सुना दीजिए, अंदाज फिल्म का। अंदाज
1: अंदाज फिल्म का
0: है ना?
1: जी
0: हाँ, आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का।
1: बिल्कुल। तो चलिए सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ पहुंचे आपके पास कॉल का इंतजार करते हुए कार्यक्रम हेलो सहेली में। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं अमिता बोल रही हूँ, मतलब मेरा कॉल लग गया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है।
0: जी हाँ अमिता जी, आपका कॉल लग गया है।
1: जी
0: तो बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं पटना से बात कर रही हूँ।
0: पटना से आप क्या करती हैं, कैसी हैं, क्या जीवन में क्या करती हैं, गृहिणी हैं या कुछ और काम करती हैं?
1: मैं एक लेखिका हूँ।
0: क्या
1: एक
0: बात
1: शायरा हूँ
0: जी,
1: एक कवित्री हूँ। मेरी किताब भी है लहरे कशिश, मेरा पेन नेम है लहरे,
0: पेन नेम है आपका लहरे।
1: लहरे, और मेरी किताब जो प्रकाशित हुई है उसका नाम है लहरे कशिश।
0: ये बताइए कि किस तरह से शुरुआत हुई आपकी लिखने की?
1: मैं जब 5-6 स्टैंडर्ड में थी तो मुझे कविता पढ़ने का बहुत शौक था और मैं लिखती भी थी,
0: जी
1: थोड़ा बहुत लिखती थी। शुरू में चिड़िया पे, कौवे पे, सब पे लिखती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो थोड़ी और ज्यादा कविता में, शायरी में रुझान आता गया। फिर कुछ शायरों को पढ़ा और फिर धीरे धीरे फिर मेरी डायरी, मेरी कलम और मैं, तीनों शुरू हो गए, साथ बैठ गए। मगर आजकल ये मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सब कुछ है, तो फिर एक दो कविताएं मैंने डाली तो लोगों को पसंद आने लगी, तो फिर मैं और लिखने लगी, कविताएं भी लिखना चालू की मैंने, शायरी भी, फिर प्रोग्राम में भी जाना चालू किया, होस्टिंग भी करना चालू किया।
0: अरे वाह, तो आपकी रचना तो हम जरूर सुनेंगे। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सुख और दुख, इसे आप किस तरह से लेती हैं जीवन में?
1: देखिए दीपा जी, जैसे हम शुरू से स्कूल में तब हमें पढ़ाया जाता था, तब हम रटते थे सिर्फ सुख और दुख सिक्के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं
0: जी।
1: लेकिन अब जब उसे अनुभव में मैं लेती हूँ तो मैं ये मानती हूँ कि दुख एक ऐसी सीढ़ी है ना जो हमें अंदर से बहुत मजबूत बनाती है, संवेदनशील बनाती है, और जब हम इस सीढ़ी को पार कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा एक नया जन्म होता है। मैं कहना चाहूंगी कि दुख जो है ना वो अध्याय जो इंसान को एक नया जन्म देता है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब आपसे हम एक आपकी रचना भी सुनना चाहेंगे।
1: अब जैसे कि आप मुंबई से हैं और मुंबई की तीन चीजें बहुत फेमस हैं,
0: तो बताइए वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि मुंबई की प्रसिद्ध हैं?
1: जी, मुंबई की लहरें, मुंबई का वड़ा पाव और मुंबई की बारिश।
0: ये बात
1: क्या मैं सही बोल रही हूँ?
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तो
0: जी
1: क्या मैं आपकी मुंबई की बारिश पर कुछ सुना सकती हूँ?
0: बिल्कुल
1: सुनाइए। और उसके बाद आप कुछ बूंदे यहाँ भी भेज दीजिए हमारे पटना में।
0: हम तो चाहते हैं हर तरफ बारिश और ये रिमझिम फुहारे हो, पटना में भी बिल्कुल बहुत जल्द आ जाएगी, लेकिन तब तक आपकी रचना को आप विविध भारती की स्टूडियो तक पहुंचाइए।
1: जी बिल्कुल। मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी एक बारिश है।
0: जी,
1: जिंदगी एक बारिश है, झूम कर इसे प्यार कर, मुट्ठी में क्या कैद करेगा, बस बूंद बूंद का एहसास कर। महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, महज तू ही नहीं गिरफ्त गमों से, हर दिन को यू दुश्वार न कर, मुकम्मल होंगे तेरे भी ख्वाब, इतना तू इस पे एतबार कर। क्यों दूर से ही तू तक रहा, क्यों दूर से ही तू तक रहा, हाँ छुपे हैं लहरों में कई भंवर, पर साहिल तू है, किनारा भी तुझ में, अपनी मौजों से बस तू प्यार कर। नींद ही तो टूटती है हरदम, नींद ही तो टूटती है हरदम, ख्वाबों से प्यार बेशुमार कर, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, लफ्ज बिखेर दे सतरंगी आसमान पे, थम थम के चल पर और इंतजार न कर, पर और इंतजार न कर।
0: बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही प्यारा।
1: हमें
0: उम्मीद है कि जितनी भी हमारी सखियां सुन रही हैं उन्हें भी ये आपकी रचना बेहद पसंद आई होगी, हमें भी बहुत अच्छी लगी। और एक

0: प्रेरणा भी मिल रही है कि हाँ ये लहरें कभी सुख की आती हैं, कभी दुख की आती है। और अब बताइए अमिता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: एक पुरानी फिल्म है छोटी सी बात, उसका ये गाना है, न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी।
0: ये सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत है।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम सुनीता अशोकराव देशमुख है। मैं अमरावती जिले से बात कर रही हूँ।
0: अमरावती से सुनीता जी, बताइए सुनीता जी क्या करती हैं आप?
1: मैं मैम खाना बनाने का काम करती हूँ।
0: अच्छा, यानी टिफिन
1: घर में
0: सर्विस।
1: घर में खाना बनाने को जाती। मैं रोटी ही बनाती सिर्फ। 4-5 घर के खाना बनाती दिन में, फिर बाद में दोपहर में आने के बाद में सिलाई काम करती।
0: अच्छा, यानी आप घर में जाती हैं, दूसरों के घर जाती हैं और वहाँ पे
1: हाँ,
0: जाके।
1: दूसरे के घर जाकर रोटी बेल के आती, फिर
0: अच्छा,
1: बाद में घर का सिलाई काम करती, घर के काम।
0: यानी कि घर में जो लोग व्यस्त हैं वो नहीं अपना समय उतना दे पाते हैं, तो आप ये मदद कर देती
1: हाँ,
0: हैं कि
1: सब
0: आप
1: जॉब करने
0: जाकर।
1: वाले हैं ना यहाँ पे, टीचर
0: जी जी
1: है तो टीचर क्या ही सब काम करती मैं।
0: जी और घर पे आकर के भी आप आराम नहीं करती हैं, आप फिर से बिजी हो
1: नहीं
0: जाती हैं।
1: रुके।
0: जी
1: हाँ बिजी है, पूरा शेड्यूल बिजी है।
0: तो व्यस्त रहना अच्छा रहता है ना। और हमें ये भी बताइए कि दुख और सुख, ये इन दोनों चीज़ों को आप जीवन में कैसे देखती हैं?
1: मेरे पीछे तो दुख ही दुख है मैडम। अभी कैसा, मेरा भाई और मैं दोनों ही रहते हैं, ज्यादा नहीं टेंशन लेते हम काम का। थोड़ा वो जितना अपने को है, जितने लगते अपने को रोजी,
0: जी
1: उतनी कमाते बस। ज्यादा करके भी अपने तबीयत देखने वाला कोई नहीं है ना पीछे। मेरा भाई और मैं, हम दोनों ही रहते हैं। माँ पिताजी नहीं है, मेरे घर वाले गुजर गए। हाँ तो भाई की ही रहती मैं।
0: तो देखिए, कठिन से कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं, फिर भी आप बिल्कुल खुशी के साथ और
1: खुशी
0: सकारात्मक
1: के साथ
0: सोच रख के
1: बताते
0: आप आगे बढ़ रही हैं, अपने आप को व्यस्त रखती हैं और खुश रहती हैं, दूसरों की भी मदद करती
1: मैम।
0: हैं। और
1: मैं मेरी सहेली के नाम लेती।
0: जी ले लीजिए।
1: हाँ, बबीता ठाकुर और एक शहना शेख है।
0: जी, उन्हें भी हम नमस्कार करते हैं और चाहेंगे कि अगली बार वो भी हमें कॉल करें। अब बताइए सुनीता जी कि आप कौन सा
1: हाँ,
0: गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैंने साउथर्न फिल्म का कौन सा भी गीत सुना मैम।
0: चलिए तो सुनते हैं आप ही के पसंद का ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म, तो जानते हैं अब किस सखी का लगने वाला है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं गुजरात बड़ौदा से सुहाना बात कर रही हूँ मैडम।
0: सुहाना, क्या बात है, गुजरात से अभी एक और कॉल आया था। आप बताइए क्या चल रहा है जीवन में, कैसी हैं आप?
1: जी मैडम, अभी तो जीवन में सब ठीक ठाक है। बरसात आता है नहीं आता है, बरसात नहीं आता है अभी, गर्मी बहुत है।
0: सुहाना जी देखिए, प्रकृति का नियम है, इतनी गर्मी हमने सही है ना, तो बरसात तो अवश्य आएगी, है ना?
1: मुझे बहुत पसंद है लेडी, और मुझे आपसे बात करने की भी बहुत खुशी लग रही है मैडम। पहली बार बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैडम
0: जी। हम आपकी खुशी
1: बयां नहीं कर सकती
0: जी, आपकी खुशी को हम बिल्कुल समझ रहे हैं, और हमें भी उतनी ही खुशी है जितनी सुहाना आपको खुशी है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैडम, आपके पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए।
0: चलिए तो सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं सुशीला महेश्वरी बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: सुशीला महेश्वरी भोपाल से?
1: जी
0: जी। सुशीला जी, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, और आपसे बात हो पाई है तो और अच्छे हो गए हम। अपने बारे में कुछ बताइए सुशीला जी।
1: हाँ मैं घर में रहती हूँ, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: तो विविध भारती के कार्यक्रम पसंद हैं आपको?
1: हाँ जी, और आप लोग की सबकी आवाजें बहुत अच्छी लगती है मुझे।
0: जी, विविध भारती से ये प्रेम ही है कि आप और हम जुड़े हुए हैं।
1: सबसे
0: और
1: पहला प्यार विविध भारती हमारे लिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी तक सुन रहे हैं।
0: जी, तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे प्यार से शुरू तेरे प्यार से खत्म,
0: जी
1: ये वाला गाना सुनना है मुझे।
0: जी, बहुत सुंदर गीत है, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते, किस सहेली से हमारी बात हो रही है?
1: मैं अंजू बोल रही हूँ, वाराणसी से।
0: वाराणसी से अंजू जी। अंजू जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: वैसे मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, पियर मेरा जयपुर है, शादी मेरी बनारस हुई है
0: जी।
1: बनारस में हूँ, एक तरह से गृहिणी हूँ।
0: तो देखिए ना, गृहिणी का काम भी कोई कम नहीं होता। सब तो अपने काम को लेकर के घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पीछे घर को संभालना, घर को देखना, हर चीज की व्यवस्था करना, ये गृहिणी का काम होता है। अब ये भी बताइए मुझे अंजू जी, रेडियो सुनना पसंद है? आप विविध भारती सुनती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, विविध भारती ही सुनती हूँ ज्यादा।
0: एक मुझे बात बताइए, सुख और दुख, इसको आप किस तरह से लेती हैं?
1: सुख और दुख तो आना जाना लगा ही रहता है हर की जिंदगी में, लेकिन हाँ मैं एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ कि हाँ जब दुख आया तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ मैं
0: जी
1: जिंदगी में
0: जी। तो ये बात हम सबको समझने की और सीखने की है कि भाई अगर एक चीज आई है तो दूसरा भी आएगा, यानी कि दुख अगर आया है तो सुख भी आएगा, है ना जी। और अब जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती है आज?
1: मैं दिल एक मंदिर का गाना है, हम तेरे प्यार में सारा आलम को भेजे।
0: चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, कौन सी सहेली से हमारी बात हो रही है आज?
1: वैष्णवी पांडुरंग मोरे।
0: कहाँ से बात कर रही है वैष्णवी आप?
1: वारंगा फाटा, जिला हिंगोली।
0: वारंगा फाटा से। तो बताइए वैष्णवी, क्या करती हैं आप?
1: मैं पढ़ती हूँ।
0: वैष्णवी, आपने अभी कौन सी कक्षा की एग्जाम दी?
1: सेवेंथ।
0: सेवेंथ की।
1: हाँ।
0: कैसी हुई परीक्षा आपकी?
1: बहुत अच्छी हुई।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपने जितने कॉन्फिडेंस से ये बोला ना, बहुत अच्छी थी। मतलब कि सारे पेपर्स आपने बहुत अच्छे से लिखे हैं, है ना? तो रेडियो
1: हाँ
0: सुनती हैं आप?
1: हाँ सुनती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई के अलावा मतलब रेडियो भी सुनती हैं, और क्या करती
1: हाँ,
0: हैं? क्या क्या शौक हैं आपके?
1: गाने गाने का भी शौक है, खेलने का भी शौक है।
0: कौन सा खेल पसंद करते हो आप?

0: खो खो
1: खो खो खेलते हो, तो और भी आपकी सखियां होती होंगी जिनके साथ आप खेलती होंगी खो खो, है ना।
0: हाँ।
1: फिर घर आकर के शाम को अपना होमवर्क खत्म करना, पढ़ाई करना, ये सब चलता होगा। तो वैष्णवी बताओ, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हो आप?
0: छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी।
1: तो चलिए सुनते हैं अनाड़ी फिल्म का आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: विजया रानी से।
0: कहाँ से बात कर रही है विजया जी?
1: अभी तो मैं हैदराबाद में हूँ, लेकिन रहती हूँ मैं पूर्णिया बिहार में, बेटे के पास आई हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। तो विजया जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एचओडी के पोस्ट पर मैंने काम किया है। अब मैं 5 साल पहले, आज अब 5 साल पूरा हो जाएगा मेरा, मैं रिटायर हो चुकी हूँ। दर्शन शास्त्र की अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर आप रही हैं?
1: हाँ, और मैंने 42 वर्षों तक महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी की सेवा की है, बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों के साथ रही हूँ।
0: तो विजया जी, मैं ये जानना
1: हाँ?
0: चाहूंगी, आपने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया होगा, आपने बहुत सारे अनुभव उस वक्त लिए होंगे, तो आपका
1: हाँ
0: क्या
1: हाँ
0: अनुभव रहा उस वक्त जब आप पढ़ाया करती थी, जब आप कार्यरत थी?
1: तो मेरा अनुभव ये रहा कि मैंने सिर्फ विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट नहीं समझा, उनको मैंने अपनी बेटी की तरह पढ़ाया।

0: था, जितने बच्चे आते गए सबको, और मैं उनसे हृदय से जुड़ जाती थी। ये मेरी कमजोरी कहिए या जो कहिए
1: जी, ये तो कमजोरी हो नहीं सकती, ये तो ताकत है एक टीचर
0: और
1: की।
0: इतना उनको शिक्षा देने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ मैं उनका पर्सनल प्रॉब्लम भी सुनती थी,
1: क्योंकि आप टीचर,
0: और उनका जो सॉल्व कर सकती थी मैं कोशिश करती थी उसके प्रॉब्लम को सुनूं और उसको उस तरह से मुक्त रखूं जो उनके दिमाग में चल रही है बातें घर को लेके, अपने माता पिता को लेके, ताकि उसका पढ़ने में मन लग सके, वो अपने आप को कंसंट्रेट कर सके पढ़ाई। हाँ, ये हुआ मेरे साथ। मैंने बच्चों को समय भी दिया, सिर्फ पढ़ाया नहीं
1: जी,
0: और मुझे इसका संतोष है कहीं ना कहीं।
1: बहुत अच्छी बात है, संतोष ही परम धन कहिए या सुख कहिए। साथ में मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप दर्शन शास्त्र की शिक्षिका हैं, तो सुख और दुख को आप किस तरह लेती हैं?
0: तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग ज्यादातर संवेदनाओं के स्तर पर जीते हैं।
1: जी,
0: खुशियों के क्षण में भी हम अपना आपा खो देते हैं और दुखों के पल हमें छिन्न भिन्न कर डालते हैं।
1: जी,
0: इतना तोड़ डालते हैं कि ताउम्र हम उसके आघात से उबर नहीं पाते।
1: जी,
0: सुखों के क्षणों को तो हम भुला देते हैं लेकिन दुख हमारी अंतरात्मा तक झकझोर जाता है।
1: जी,
0: अब यहाँ पर मैं रुक कर सोचती हूँ कि सुख दुख के झंझावातों में हम खुद को कैसे नियंत्रित रख सकें।
1: जी, यही हम जानना चाहते हैं, और हमारे सखियां भी अवश्य जानना चाहती होंगी कि जब अति कठिन परिस्थितियां आए या बहुत ज्यादा खुशी के पल आ जाएं, तो अपने आप को एक बैलेंस बना के कैसे रखें, और जो आप बताना चाह रही है ना कि नियंत्रण कैसे करें, वो भी बताइए।
0: हाँ, नहीं ठीक है। तो मेरा मानना है हम लोग सब स्थित प्रज्ञ तो नहीं हो सकते ना, लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि न सुख शाश्वत है और न दुख।
1: जी,
0: थोड़ा सा हम तटस्थता का अभ्यास करें, न्यूट्रलिटी का, पर न्यूट्रल हो जाए अगर कुछ क्षण के लिए, और यह समझ लें कि सुख और दुख हमेशा नहीं रहेंगे। आज दुखों की घड़ी आई है तो कल सुख भी हमारे द्वार पर आएगा।
1: जी, यानी ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए,
0: अपनाना होगा, और जीवन तो निर्झर की तरह बहता ही चला जाएगा और सुख दुख तो उसकी हिलोरे हैं।
1: जी, बिल्कुल सही, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में सुख और दुख की परिभाषा समझाने की कोशिश की है विजया जी। तो विजया जी बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज आप?
0: ममता फिल्म का, रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके गली बनके सभा बागे वफा में।
1: तो चलिए सुनते हैं ये आप ही की पसंद का सुंदर गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: किससे बात हो रही है हमारी?
1: शांति राजपूत से जी।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: जबलपुर
0: जी। शांति जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: ठीक हैं जी मैम, आप कैसी हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और क्या चल रहा है इन दिनों, क्या कर रही हैं आप?
1: कुछ नहीं मैम, घर में रहते हैं, घर ही का काम, खाना पीना, घर हाउस वाइफ से घर ही रहते हैं, कुछ
0: जी।
1: नहीं। हाँ
0: हमारी कई सखियां कहती हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, हाउसवाइफ हैं, लेकिन हाउसवाइफ का भी काम बहुत अहमियत वाला होता है। हर काम, हर चीज़ आपको देखना
1: हाँ,
0: होता है,
1: जी
0: हमें
1: जी
0: देखना
1: जी
0: होता है ना
1: हाँ।
0: जी। घर के काम के अलावा और क्या करना पसंद है आप?
1: और मैं विविध भारती के रात में भी सुनती हूँ, 12-1 बजे लोग सब कार्यक्रम, दोपहर में भी सुनती, सुबह भी सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे।
0: यानी कि घर के काम करते करते आपका रेडियो चलता रहता है।
1: मैं चालू कर लेती हूँ मोबाइल से और सुनती रहती, काम भी करती रहती
0: हाँ,
1: हूँ।
0: तो मन प्रसन्न रहता है और काम भी होता रहता है ना
1: हाँ जी।
0: जी। तो बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, निकाह पिक्चर का
0: चलिए सुनते
1: जी।
0: हैं आपकी पसंद
1: हाँ
0: का ये गीत।

हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। सखियों, आज हमने जाना जीवन के दो पहलुओं के बारे में, यानी सुख और दुख के बारे में। कई सारे जज्बात यहाँ पे साझा हुए, कुछ हुई मन की बातें, आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबान। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240002462, अंग्रेजी में 02240024662। एक और नंबर है 02228670288, अंग्रेजी में 02228670288। 022 मुंबई का STD कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से हमारी सहयोगी रही भावना सिंदल, संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाय के 4 बजने को हैं कुछ ही देर में, और इस समय आप सुन रहे हैं हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मनीष वैद्य की कहानी सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी। वाचन स्वर ममता सिंह का है।
2: प्रेम परछाई है, नहीं वो नदी के तटों की तरह है, कभी ना मिल पाने को अभिशप्त। प्रेम हमारे भीतर के नमक की तरह है, नहीं प्रेम तेजाब की तरह है, भीतर तक सब कुछ खत्म कर देने वाला। प्रेम कोमल अनुभूति है, नहीं वो विद्रोह का उद्घोष नाद है। लड़की के मन में खलबली मची है, उसके चारों तरफ घुप अंधेरा है। भीतर के अंधेरे में घुल रहा है बाहर का अंधेरा। वो उस अंधेरे की आदी थी, वो इसे जानती थी, वो अंधेरे से नहीं डरती थी, वो किसी से नहीं डरती थी। वो नदी से मछलियां ले आती, शिकार करती और गोफन तान कर ऊंचे पहाड़ों से फल गिरा लेती। नदी की धार के खिलाफ तैरती हुई मछलियां उससे पीछे छूट जातीं। वो अलबेली अल्हड़ चुलबुली और अपनी ही धुन की थी, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग। उसकी सहेलियां भी उसकी तरह नहीं थीं, थोड़ी थोड़ी करीब, फिर भी उनकी आपस में दोस्ती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्ती अपनी नानी से थी। नानी थी भी ऐसी, उम्र का फासला उनकी दोस्ती में कभी बाधा नहीं बनता। कभी नानी उसकी उम्र की हो जाया करती तो कभी वो नानी की उम्र में दाखिल हो जाया करती। वो बचपन से ही नानी के पास रहती थी। उसके माँ पिता कई साल पहले चल बसे थे, तब वो बहुत छोटी थी, इतनी कि उसे ठीक से अपने माँ पिता का चेहरा भी नहीं याद। नानी के गांव के ठीक पीछे पहाड़ था, इतना पास कि जैसे गांव उसकी गोद में हो। पहाड़ से कूदती फांदती नदी गुस्से में बहुत तेजी से बहती तो कभी मंद मंथर सी थकी मांदी किसी बुढ़िया की तरह। वो एक पहाड़ी नदी थी, पहाड़ों से फिसलकर मैदानों में बड़ी नदियों से मिल जाने वाली। जंगल के बीच चारों ओर गांव कुछ इस तरह ढका था कि बहुत पास आने पर भी उसका कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। सागवान, पलाश, तेंदू, महुआ, शीशम के बड़े बड़े पेड़ों और झाड़ी नुमा रास्तों के बीच से यहाँ तक एक पगडंडी पहुँचती थी। यहाँ लोगों को रात बेरात चीते नाहर की गुर्राहट भरी दहाड़ सुनाई देती तो कभी रीछ की आवाज़ें, पर ये लोग उन आवाज़ों से डरते नहीं थे। वो गांव भी नहीं था, गांव जैसा कुछ था। गांव में बहुत से मकान होते हैं, बहुत सारे लोग

0: होते हैं और वे खेती या दिगर काम करते हैं। वहाँ कुछ दुकानें होती हैं, स्कूल अस्पताल जैसी सुविधाएं भी हो सकती हैं, पर वो ऐसा नहीं था। वो छोटी सी बस्ती, कुल 20-22 टपरियाँ होंगी और 100 के करीब लोग, किसी फलिए की तरह गांव बाकी दुनिया से खोया हुआ था। हाँ, सरकारी नक्शे में ज़रूर जंगल के बीच सुई की नोक की मानिंद था। नदी से कुछ दूरी पर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से ओटले पर पत्थर की एक मूर्ति थी। गांव के मंदिरों और दीगर जगहों पर अमूमन कई मूर्तियां हुआ करती हैं, पर ये उन मूर्तियों से बिल्कुल अलग थी। ये एक औरत का बुत था, वो देवी की तरह नहीं थी। देवी की मूर्तियों के हाथों में हथियार या फूल जैसी चीज़ें होती हैं। ये पत्थर की औरत उसी तरह थी जैसे यहाँ की दूसरी औरतें। बुत में वो मुस्कुराती हुई दिखती, मानो कुछ ही पलों में खिलखिलाकर हंस पड़ेगी। किस राम के इंतजार में है ये पत्थर की अहिल्या? उस लड़की के लिए वो बुत बचपन से ही किसी रहस्य की तरह था। गांव में कोई शादी करके लौटता है तो नए जोड़े को सबसे पहले यहीं लाया जाता। लाल ध्वजा, घी का दिया, ताजे फूल, अगरबत्ती का धुआं, लोबान का धुआं, नारियल, दानी चुनरी, ढोल ढमाकों के साथ सब यहाँ पूजा करते हैं। उनके साथ औरतों का हुजूम होता। उसने नानी से कई बार पूछा था, नानी हमेशा ही उसे टाल दिया करती। उसे नानी ने कई कहानियां सुनाई, पर ऐसा क्या था इस कहानी में कि उस बुत की बात आते ही वो डरने लगती? किसी अनहोनी की आशंका में उसकी आंखें फटने लगती। नानी उसे बच्चों की तरह अपने अंक में भर लेती और उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाती रहती जब वो डरती। वे शायद तब किसी तूफान से गुजर रही होती, सूखी नदी में तपती रेत का दरिया पार कर रही होती। चंदा नाम था उसका। नानी ने पहली बार उसे देखा था तो सहसा ही ये नाम उसके मुंह से निकल आया था, उसके लिए अतखिला चांद का टुकड़ा। इस तरफ काले लोगों और अंधेरों के बीच रहने वाली नानी को उसकी कंचन सी देह से नया उजाला दिखा था। तब नानी उसकी कंचन काया से डरी थी। उसकी माँ को कहा था, ज्यादा अटोपनी पड़ेगी इसे, सुंदर लड़कियां माँ बाप के लिए परेशानी का सबब होती हैं। हाँ, उसके आने पर आधी रात पीतल की थाली बजाई गई थी। अंधेरी रात में दूर तक थाली की आवाज गूंजती रही। नानी को तब क्या मालूम था कि आगे चंदा को उसे ही अटोपना पड़ेगी और उसे ही अतिरिक्त सावधानी भी रखनी होगी। चंदा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके अनुपात में नानी की चिंताएं भी बढ़ने लगी थीं। नानी कहती, ये दूसरों की अमानत है, इसका शादी ब्याह हो जाए तो मेरी चिंता खत्म, फिर मैं चैन से मर सकूंगी। उसने बचपन से बस नानी को ही देखा था, वही उसके लिए माँ बाप थी। उसने अपने बचपन की सारी चाहतें नानी को ही पूरे करते देखा था। नानी कभी उस पर चिढ़ जाती तो कुढ़ने लगती, तार सी लंबी हो चली है पर अक्कल बच्चों जैसी, जब देखो घोड़ी जैसी दांत पिलकाती रहती है, उलल बछेरी कहीं की, सारा दिन यहाँ वहां घूमती रहती है। अरे जमाना बहुत खराब है, कल को कुछ हो गया तो कहाँ मुँह छुपाऊंगी मैं। पर नानी की डांट जैसे ठंड की धूप, भीतर ही भीतर उसमें अपनेपन की गुनगुनी आँच होती।
1: नानी

वो नानी को जैसे तैसे मना ही लेती। कुछ ही पलों में नानी भी भूल जाती तो उसे कब याद रहता। उम्र बढ़ने के साथ लड़की की देह से चंदन की खुशबू का सोता फूटने लगा। वो चंपा की तरह लरजती थी, तितलियों की तरह हल्की होकर फूलों के कानों में कुछ कहती तो वे खिलखिलाने लगते। वो नदी के पास जाती तो नदी उससे अटखेलियां करने लगती। पहाड़ की ओर जाती तो उसकी घाटियों में रंग बिरंगे फूलों का गुलिस्ता खिल उठता। वो खिलखिलाती और हर श्रृंगार झड़ने लगते। उसकी सांस की लय पर पेड़ सरसराने लगते। वो पूरब की ओर देखती तो धूप खिल उठती। वो जंगल की भाषा जानती थी और जंगल उसकी भाषा पहचानता था।

नानी से कहानी सुने बिना कोई रात वो सोती नहीं थी। नानी गजब की किस्सा गो थी। किस्सा गो उनकी तासीर में थी। वो ऐसे सुनाती कि चित्र चलने लगते। वे उस समय में दाखिल हो जाया करती मानो किरदार खुद अपनी बात कह रहे हों। नानी की कहानियाँ जैसे उसकी लोरी थी। नींद की घाटियों में वो उन किरदारों के बीच बहती रहती, घूमती रहती। वे किरदार सपनों में अक्सर उससे बातें किया करते। कई बार ये भी होता कि किरदार उसके भीतर इस तरह बस जाते कि वो उनके प्रभाव से बहुत दिनों तक बाहर ही नहीं आ पाती। तब वो बेचैन सी नदी के तट पर जा बैठती, जैसे नदी से कुछ पूछ रही हो, गुमसुम सी, अनमनी और उदास, भीतर ही भीतर सुलगती हुई घंटों तक इसी तरह बैठी रहती। नानी की कहानी सुनने से पहले दो शर्त होती। शर्त नहीं तो कहानी नहीं। चंदा हर बार ये शर्तें मानती। पहली शर्त थी हुकारा, मतलब हाँ में हाँ मिलाते चलो। जब वे कहानी कहती तो जरूरी था कि सुनने वाला कुछ देर में हाँ हाँ कहता रहे। वे कहती कि हुंकारा टूटा तो कहानी की डोर भी टूटी।

नानी अक्सर छोटी कहानी सुनाती थी, पर कभी कभी कहानी लंबी हो जाती। नानी कहती कि ये उसके हाथ में नहीं है कि किसी कहानी को कहाँ ख़त्म करें, ये तो किरदार ही तय करते हैं, कहने वाले का उन पर कोई जोर नहीं चलता। कहानी सुनते हुए वो अक्सर नानी के देह के स्पर्श की आँच महसूस करती और इस आँच में नानी की तरह वो भी घुलने लगती।

नानी की देह में नमक सी खुशबू थी जो उनके किरदारों में से उनमें आई होगी। लोक कथाएं हो या सीता, उर्मिला, मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, राधा और मीरा की कहानी, इनके प्रेम और इनसे किए छल की कहानियां नानी इस अंदाज में सुनाती कि जैसे इनके दुख उसने अपने ही कलेजे में छुपा रखे हैं। वे कहती किसी समय में स्त्री मुक्त नहीं रही, न तब और न अब, हर दौर में उसे आग से ही गुजरकर परीक्षा देनी पड़ी। हाँ, यही उसका भाग है, उसे हमेशा प्रेम की जगह छल ही मिला। फिर भी उसने प्रेम का अंकुर कभी सूखने नहीं दिया। अपनी आत्मा को आंसुओं की नमी और दुखों के ताप से उर्वर बनाए रखा। आषाढ़ के आखिरी दिनों की कोई रात रही होगी, ताप और उमस से भरी हुई, हवा जैसे कहीं थम गई थी, आंगन के ऊपर आसमान में तारे ही तारे थे। नानी उस रात उसे उर्वशी पुरुरवा की कहानी सुना रही थी, ईसा से 1600 साल पुरानी कहानी, पुराणों की पहली कहानी, आज से करीब 3500 साल पुरानी। नानी कहानी सुना रही थी। स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी उर्वशी। उर्वशी के पास सब कुछ तो था, लेकिन ऐसा सरल जीवन और मनोरम प्रकृति कहाँ। स्वर्ग में नृत्य, संगीत और आकर्षण के स्थिर सपनीली दुनिया से अलग, यहाँ धरती पर राग रंग, जीवन संघर्ष, मौसमों की आवाजाही और प्रकृति का पल पल बदलना। उर्वशी को धरती हमेशा लुभाती थी। एक दिन वो धरती की सुंदरता देखने आई और जंगल की झील में अपना अक्स देखने में ऐसी खो गई कि शाम से पहले वापस स्वर्ग लौटना ही भूल गई। धरती के जंगल है ही इतने सुंदर कि कोई भी रम जाए इनमें। चंदा ने हुंकारा भरा, हाँ ये बात तो है, जंगल है ही इतने सुंदर। नानी ने कहानी को आगे बढ़ाया। तो शाम घिर आई, चांदनी रात में झील का सौंदर्य और बढ़ गया। उर्वशी के रूप गंध से जंगल महकने लगा। इससे केसी नाम के राक्षस का पुरुषत्व जाग उठा। उसने उर्वशी का हाथ पकड़ा और उसे जबरन ले जाने लगा। उर्वशी ने सहायता के लिए पुकारा। रात के नीरो सन्नाटे को चीरते हुए स्त्री का आर्तनाद जंगल में दूर दूर तक फैल गया। चंदा ने दोनों हथेलियां अपनी ठोड़ी पर रखते हुए पूछा, अरे फिर क्या हुआ नानी, कोई आया उसे बचाने? नानी ने अपनी आवाज को और भीतर तक ले जाते हुए कहा, हाँ थोड़ी दूरी पर पुरुरवा शिकार के लिए गुजर रहे थे। पुरुरवा एक प्रतापी राजा था, स्त्री और गरीबों का रक्षक। प्रतिष्ठानपुर का राजपाट होते हुए भी एकदम एकाकी। ओशिन सहित कई रानियां थीं, पर मन की बात कोई नहीं समझ पाती। राग रंग में मन नहीं लगता तो वो रात को शिकार पर निकल जाता। प्रेम से रीता इंसान कई बार लक्ष्यहीन हो जाता है। केसी राक्षस से भिड़ जाते हैं पुरुरवा और बचा लेते हैं उर्वशी को। चंदा ने चहकते हुए हुंकारा भरा, हाँ ये हुई ना बात नानी। नानी को इस तरह कहानी की शुरुआत में ही चंदा का फैसला देने वाला अंदाज ठीक नहीं लगा, पर वो भी आखिर के सागू थी। उसने अगले ही पल चंदा को फिर से बेचैन कर दिया। नानी ने आवाज बदली और वे कहने लगी, लेकिन यही आता है एक नया मोड़ जो बदलता है पुरुरवा और उर्वशी की जिंदगी को। केसी से छुड़ाने में कई बार पुरुरवा और उर्वशी का एक दूसरे से स्पर्श हुआ। दोनों के भीतर स्पर्श से तरंगित सितार के कई तार छिड़ गए। चांदनी रात के दूधिया उजाले में दोनों की आंखें मिली तो वे एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढने लगे। बरसों की आस घुमड़ आई, अनायास बारिश होने लगी। उस रात दोनों की बरसों से तपती अतृप्त देह अंधेरे और बारिश में एक होने को आतुर थी। दोनों की देह उस बियाबान में अकथ प्रेम की कहानी लिखती रही। चंदा ने हुंकारा देते हुए पूछा,

तो फिर शादी हो गई दोनों की? नानी ने डपटते हुए कहा। अरे ऐसी आसान कहाँ होती है कहानियां चंदा। उर्वशी यहां धरती की नहीं, वो तो स्वर्ग की थी ना। नानी फिर शुरू हो गई। तो सुबह पुरुरवा ने भारी मन से उर्वशी को स्वर्ग भेज दिया। दोनों रीते रह गए, भीतर ही भीतर कुछ खो गया। न पुरुरवा का मन धरती पर लग रहा था और न ही उर्वशी का मन स्वर्ग में। एक का धरती पर राजसी ठाठ बाट तो दूसरे का स्वर्गिक आनंद, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रेम में झुलस रहे थे, दोनों अनमने से।

अनमनी उर्वशी, नानी कुछ कहती इससे पहले ही एक तारा टूटकर जमीन पर आने लगा और नानी ने कहानी वहीं रोक दी। चंदा शर्त से बंधी थी, वो कहानी के इस तरह अचानक बीच में रुक जाने से उदास हो गई, पर कहा कुछ नहीं। उसे पता था कि नानी अपनी शर्त कभी नहीं तोड़ती। अधूरी कहानी उसके भीतर देर तक घुमड़ती रही।

इस वक्त आकाश की याद में है, बड़ी शिद्दत से, मानो बीता हुआ सच अभी गुजर रहा हो उसकी आंखों के सामने। वो कहाँ होगा? क्या वो भी उसे याद करता होगा? पता नहीं। यही नदी के किनारे उन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों को नदी ने देखा था, पीपल की बुत वाली औरत ने देखा था, पहाड़ ने देखा था और जंगल ने भी। उसने उसे देखा तो वो देखती रह गई। ऐसा कोई इधर उसने कभी देखा नहीं। उसे लगा कि ये जंगल की कोई परी है, किसी ने तन्मय होकर तराशी है उसकी देह। बड़ी बड़ी आँखें, सुतवा नाक, लरसते से नाजुक होठ, सुराही का गला, काले बालों का लहरदार जूड़ा, लाल ओढ़नी, धानी घाघरा, जैसे वन देवी हो या राह में भटकी हुई कोई राजकुमारी। वो खो गया था। वो अब महसूस कर रही थी उसकी आंखें उसे भेद रही हैं, शायद भीतर आत्मा तक। उसकी आंखों में भी इंद्रधनुष तनने लगा था। सपनों से उसके जीवन में उतर रहा था प्रेम, धीरे धीरे अपने अंक में लेती हुई आज थी वहां। वो उस ताप से अपने में ही बिखर रही थी और वो फैल रहा था उसके वजूद में, हौले हौले। चंदा तिल तिल आकाश के वजूद में समा रही थी। उसका अपना सब कुछ विलीन हुआ जा रहा था। प्रेम में दो हो ही नहीं सकते, वहां अद्वैत है। आकाश की तरह उसने भी चंदा को अपने में समेट लिया था। आकाश के बिना चंदा तो चंदा के बिना आकाश कैसा? वे प्रेम में थे या उनके साथ

आकाश जिसके वजूद में चंदा तिल तिल समा रही थी, वही आकाश दरअसल यहाँ जंगल बचाने आया था। कुछ लोग जंगल को ख़त्म कर देना चाहते थे। वो जंगल को उसी तरह रखना चाहता था जैसे जंगल बरसों से था। वो नदी में मछलियों की आवाजाही देखता रहा। चंदा के पैरों को छूते हुए नदी का पानी अपनी धार में बह रहा था। तब से अब तक न जाने कितना ही पानी बह गया होगा इस धार में। वो सोचने लगता है, स्मृतियां दुख से भर देती हैं, जख्म हरे हो जाते हैं। क्यों नहीं भूल पाते हम दुखद स्मृतियों को, मानो कहीं भीतर फंसी रह जाती हैं ये दुखद स्मृतियां। सपनों से जीवन में आया प्रेम कब फिर सपनों में लौट जाता है, हम समझ भी नहीं पाते। प्रेम दुर्लभ है, शायद हवा के वर्जित फल की तरह। कुसुम जो चंदा की प्रिय सहेली थी, शुरू से ही इसके खिलाफ थी, पहले दिन से। वो कहती थी, प्रेम कुछ भी नहीं है, बस छलावा है, एक भरम है, एक बहाना है। दोनों नदी के तट पर इसी जगह बैठी थीं। चंदा ने कुसुम से हंसते हुए कहा, कुसुम तुझे वो कहावत याद है ना, झड़त पान हसत पीपली, झड़त पीपली हसत पान। मतलब, कुसुम ने पूछा था। चंदा बोली, अरे जब पतझड़ में सारे पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं तो पीपल उन नंगे दरख्तों पर हंसता है, और जब सारे पेड़ पौधे पर नई कोपले आने लगती हैं तो छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं, तब पीपल के पत्ते झड़ने लगते हैं और सारे उस पर हंसते हैं। चंदा ने हंसते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। आज मैं प्रेम में हूं तो तू मुझे ऊंच नीच समझा रही है, कल जब यही तेरे साथ होगा तब मैं। कुसुम ने बीच में ही बात काट दी। ऐसा कभी नहीं होगा चंदा, मैं नहीं पढ़ने वाली तेरी तरह प्रेम रेम के चक्कर में, चंदा ने चहकते हुए कहा था। पगली, कोई सोच समझकर थोड़ी ही प्रेम करता है, ये तो बस हो जाया करता है। प्रेम दिमाग से परे होता है, वो तो मन की किताब में कैद होता है। प्रेम मन में होता है, अनजाने में, जानबूझकर नहीं। चलो चलो, प्रेम अंधा होता है, कुसुम ने कहा। नहीं कुसुम, प्रेम तो आंखें खोल देता है, चंदा बोली। प्रेम संकीर्ण कर देता है, कुसुम बोली। नहीं रे, प्रेम तो संकीर्णता को तोड़ता है, प्रेम सारी हदें तोड़ देता है, प्रेम निसीम है, निसीम, चंदा बोली। प्रेम समझ को ही खत्म कर देता है, ये एक तरह का पागलपन ही है चंदा। प्रेम जीवन को नए अर्थ देता है, वो दो दिलों को जोड़ता है, ये तो एक अलग अनुभूति होती है। प्रेम हमारे पागलपन का उपचार है, दवा है

प्रेम दवा है चंदा, प्रेम आग है, आग। कुसुम, आग भी तो जरूरी है ना जीवन के लिए। आग से ही तो अनाज पकता है, आग से ही लोहा ढलता है, आग से ही सोना तपता है। आग नहीं तो जीवन कैसा। हर सर्जन आग की भट्टी से ही तो उपजता है। चंदा, प्रेम अपनों से तोड़ देता है, समझी? नहीं रे, प्रेम किसी को नहीं तोड़ता। कुसुम, जो प्रेम को नहीं समझ पाते वे खुद टूट जाते हैं। प्रेम तो हमेशा जोड़ता ही है। चल हट, तुझसे तो बात करना ही व्यर्थ है चंदा। अरे सिर्फ प्रेम की बात पर ही ना कुसुम, बाकी बातों में तो नहीं। ऐसा इसलिए है कि तूने प्रेम को अब तक सिर्फ दूर से ही देखा है, दूसरों की नजरों से ही ना। उसमें डूबना तो दूर, तूने तो छुआ तक नहीं है, फिर उसके बारे में कैसे जान सकती है भला। चंदा उन पलों को शिद्दत से याद करती है तो उसके भीतर यादों की नदी मचलने लगती है। उसे अपने ही तन की खुशबू अब पराई सी लगती है। उसका पुरुरवा भी क्या उसे इसी तरह कहीं याद करता होगा? याद करता होता तो लौट आता अब तक। कभी कभी लगता है कुसुम सही कहा करती है, कभी लगता है उसका मन सही कहता है। अपने ही द्वंद्व में उलझी है वो, पर उसे भरोसा है अपने प्रेम पर, पूरा भरोसा है कि एक दिन लौट आएगा आकाश भी। चंदा और आकाश जब मिलते तो देर तक बातें करते रहते। उनकी बातें कभी ख़त्म नहीं होती थीं। उनके पास बातों का ख़जाना था। कभी वे बातें करते हुए जंगल में खो जाते तो कभी पहाड़ से उतरती नदी को देखते रहते। नदी का ये तट उन्हें सबसे अच्छा लगता। उनके पैर नदी के पानी में होते और इस तरह नदी प्रेम